0: लाइका गोल्ड।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान,
2: देखिए दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 0208574-8410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
4: Are we there yet?
5: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
5: But how? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simsy before we left London.
5: Simsy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
6: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
7: T's and C's apply.
8: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: Laika Gold.
1: Laika Gold.
0: Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Laika Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at laikamedia.co.uk.
2: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

सो मैं विसर ना जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना

जाने मन कोए। मन्ने सुत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध। मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए। मन्ने मग ना चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाथ, जुग जुग एको वेस। एक दूजी बो लख होवें, लख होवें लखवीस, लख लख गेड़ा आखियें, एक नाम जगदीश। ए

0: experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com। T&Cs अप्लाई।

0: खुल गई चोर बाजारी, अरे लुट गई दौलत सारी। सेठ भी अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ मरा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के

0: अगर वो टूटी सारी तो जालिम अंदर जोश भी अंदर होश ठिकाने आएंगे, जैसे मारा गया वो जालिम सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून

0: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
1: Breakfast with Deep Raja. Okay, now you've got no excuse. You have to get up. It's Saturday morning. I'm Deep Raja and I'm with you, awakening you up. Kyunki aap jaisa koi to mil hi nahi sakta na. Good morning.

0: is like a gold.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: Herald. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara, performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio पार्टनर लाइक आवर रेडियो नेटवर्क.
5: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राजकचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है.
1: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में.
5: सच?
1: बिल्कुल. देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपने पन की खुशबू सब एक ही जगह.
6: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड, IG2 6HA. कॉल करें 07555-506-015. बीकानेर वाला, a taste of India now in Ilford.
7: Chawal ho best, sab kare test. Disha rice ka hai zamana. Disha basmati rice.
8: Disha rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Kenton Road. Disha rice, come down and taste the difference.
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
10: साउथ हॉल ट्रेवल. Apple protected.
11: She can't hear you, but danger always hears her coming.
12: Sab dar bhag jaye.
11: Huma Qureshi stars in the explosive action thriller Baby Do Die Do with Sikandar Khair, Chunky Pandey and Seema Pava. Baby Do Die Do in cinemas now. Follow Bhudev Entertainment on Instagram for more information.
13: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है. बाय 20 केजी टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 केजी गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री. मिक्स एंड मैच टिल्डा बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 केजीस, यानी कि 4 टाइम्स 5 केजी या 2 टाइम्स 10 केजी या 1 टाइम्स 20 केजी. दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स. हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट. क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ.
14: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे.
1: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर.
14: यूरोप ना 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
1: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
14: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
1: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
14: કોલ 02089002323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
1: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
15: Carotino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Carotino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Carotino Better Ghee.
16: Breakfast with Deep Rancher.

0: सबसे निराला
1: मैमस्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
3: Breakfast with Deep Rancher.

0: Set Co-Food Containers, total satisfaction.
1: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
2: Himalaya Carpets ki dhadakti hui sale. Garmi se keemte pighalti hui sale. Room size laminates 30 pounds se shuru. Tamam roll stock par mark prices par 20% off. Laminate flooring from 9 pounds square meter. LVT flooring from 12 pounds square meter. Rugs, beds, sofas sab par 50% off. Carpets ki to ye sabse badi sale hai. Chupiye nahi. Visit himalayacarpets.com or come at Himalaya Carpet South Hall, opposite the Ealing Hospital.
3: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राजकचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है,
4: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्स्लो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में।
3: सच?
4: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
5: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड, IG2 6HA। कॉल करें 07555-506-015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन Ilford.
6: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
7: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाऊ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410, दैट्स 8574-8410।
9: साफ ट्रेवल Auto protected.
10: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। आज ही एक्शन लें 0208-907-2444।
11: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસ માં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે।
12: બીએપીએસ મંદિર નું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર।
11: યુરોપ ના 3-9 દિવસ ના ટૂર્સ,
12: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
11: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ।
12: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજ જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે।
11: કોલ 0208900-2323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ।
12: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન।
13: એટ બ્રેસ્ટ કેન્સર નાઉ વી નો ચેકિંગ યોર બ્રેસ્ટ કેન ફીલ ડોન્ટિંગ, બટ ઇટ્સ એઝ સિમ્પલ એઝ TLC. ટચ, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
14: Breakfast with Dee Prancha. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 02087828833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com।
2: अनुज चोपड़ा फाउंडेशन प्राउडली प्रेजेंट्स एन इवनिंग ऑफ एलिगेंस होस्टेड बाय अनीसा नासिर। तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए जहां गजल्स मिलती है बॉलीवुड से।
3: शाम चलने लगे दिल मच
2: विद द लेजेंडरी अनूप जलोटा ऑन संडे 30th ऑगस्ट एट क्वींस थिएटर रॉमफर्ड। डोर्स ओपन 5 PM, शो स्टार्ट्स 6 PM, टिकट स्टार्ट्स फ्रॉम £40। बुक नाउ एट queens-theatre.co.uk। रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
4: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
5: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
4: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
5: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
4: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
5: Visit Kajal's Couture. .co.uk.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
7: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
7: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
9: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है। बाय 20 kg टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 kg गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री। मिक्स एंड मैच टिल्डा बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 kgs, यानी के 4x5 kg या 2x10 kg या 1x20 kg। दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स। हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट। क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ।
10: sonatours.co.uk 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of July and get 600 off. Call Sonatours on 0208 951 0111.
11: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: Experience tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: Himalaya carpets ki dhadakti hui sale. Garmi se keemte pighalti hui sale. Room size laminates 30 pounds se shuru. Tamam roll stock par mark prices par 20% off. Laminate flooring from 9 pounds square meter. LVT flooring from 12 pounds a square meter. Rugs, beds, sofas, sab par 50% off. Carpets ki to ye sabse badi sale hai. Chupiye nahi. Visit himalayacarpets.com or come at Himalaya Carpets South Hall. Opposite the Ealing Hospital.
3: रेडिंग तैयार हो जाइए. रेडिंग मेला आ रहा है पामा पार्क में 1st और 2nd अगस्त. दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक एंजॉय कीजिए लाइव परफॉर्मेंसेस बाय हरभजन तलवार, मैस बोनाफाइड, मानक ई एंड सोना वालिया, प्लस लाइव सिंगिंग, डांस, शॉपिंग, टेस्टी फूड, फन फेयर, ढोल और डीजे. एंट्री बिल्कुल फ्री. मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 07517801701. रेडिंग मेला पामा पार्क, वोकिंगहम रोड, रेडिंग, RG6 1LF. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो.
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे 350 पाउंड्स की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड्स से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com. T&Cs apply.

0: आता है।
1: किशोर कुमार की आवाज में अपने जमाने का सुपरहिट गाना फ्रॉम द मूवी कटी पतंग, और उससे पहले लता जी और कुशीर दो की आवाज में प्रेम बंधन फिल्म का गीत आपने सुना। दो बैक टू बैक गीतों के साथ लीजिए आज के द ऋतु शर्मा शो की शुरुआत हो गई है। सैटरडे का दिन है आज, 18 जुलाई है आज, और मैं जानना चाहती हूँ आप सब कैसे हैं आज। लीजिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम, और मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल मजे में हैं, खुश हैं, चुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, और अब तो मौसम भी हम पर आजकल थोड़ा मेहरबान है तो उसका आनंद उठा रहे हैं। तो बस मौसम का मजा लेते रहिए, यहाँ से बजने वाले गीतों को सुनते रहिए, क्योंकि आज भी कुछ ऐसे गीत आपके लिए लेकर आई हूँ जो जरूर आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आएंगे। यस, 1 बजे तक आपके साथ रहूंगी, और देखिए आप में से कुछ साथी आज मुझे याद दिला रहे हैं। यस, मैं जानती हूँ, जरूर उस बारे में बात करूंगी। भाई जीवन बहुत छोटा है और हर इंसान जो दुनिया में आया है उसे जाना ही है। यहाँ परमानेंट बसेरा लेकर कोई भी नहीं आया है। बड़े बड़े सुपरस्टार भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और आज ऐसे ही एक सुपरस्टार के बारे में आप सब मुझे याद दिला रहे हैं। ज़रूर उनका नाम लूँगी, उनके बारे में बात करूँगी। इनफैक्ट आज की यादें में मैं उन्हें ही याद करूँगी, लेकिन उससे पहले एक अच्छी सी बात आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि खास मौके के लिए कपड़े और जूते रखना बंद कीजिए। जब भी मन करे उन्हें पहन लीजिए, क्योंकि आज के जीवन में जीवित रहना ही किसी खास मौके से कम नहीं है। इस बात को सोचिए, तब तक मैं आपको ये बता दूं।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: तो £1 के बदले में आज आपको मिलेंगे 128.9 भारतीय रुपए, और हमेशा की तरह ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी लागू रहेंगे।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai Leica Gold.
4: Leica Radio.
2: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
1: जी हाँ, तो हम जानते हैं कि फाइनल मैच फीफा वर्ल्ड कप 2026 का स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में होने वाला है, लेकिन आज भी एक मैच है थर्ड पोजीशन के लिए, और ये मैच है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। लेकिन हम आपको याद दिला दें कि बिल्कुल मत भूलिए अपना 15 मिनट का फ्री लीगल एडवाइस लेना विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ, और ये आपको मिलेगा जब आप कहेंगे लाइका।
2: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
5: This is Leica Gold.

0: सुखविंदर सिंह की आवाज में रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, 1947 अर्थ की फिल्म से लिया था ये गाना।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और आपको बता दें कि आज ये अनोखी आवाज के मालिक यानी कि बहुत ही ऊर्जावान, प्रतिभाशाली, दिग्गज प्लेबैक सिंगर हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अपनी बर्थडे मना रहे हैं। 18 जुलाई 1971 में बॉर्न सुखविंदर सिंह आज 55 ईयर्स के हो गए हैं और इनके जो फैंस हैं वो दुनिया जहान में फैले हुए हैं। देश विदेश में लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत गीत गाए हैं। इनका गाना छैया छैया चल छैया छैया आपको पता होगा कितना बड़ा हिट गीत रहा था, और इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारे गाने गाए हैं। 2000 के बाद की फिल्मों के ढेर सारे गाने हैं जो इनकी आवाज़ में सुपर डुपर हिट हैं, लेकिन आज भी ये गाना बड़ा ही प्यारा है और इसमें मेरा नाम है इसलिए मुझे और भी अच्छा लगता है। आज ये गीत आपको सुनवाया और आज इनकी बर्थडे है, तो चलिए इनको कह देते हैप्पी वाली बर्थडे।
1: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और ऋतु शर्मा आपके साथ है अब से लेकर दोपहर के पूरे एक बजे तक, और हमारे बहुत सारे साथी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
0: चलिए, तो आपके मैसेजेस पढ़कर मुझे अच्छा लग रहा है, और ये जानकर कि आपको गीत पसंद आ रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, सो थैंक यू सो सो मच। ढेरों मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं, थैंक यू दिव्या जी। हैरो में आप हमारे साथ हैं, गिरीश जी भारत में हमारे साथ जुड़े हैं, कहते हैं शनिवार का तो दिल से इंतजार रहता है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। लीजिए, सैटरडे आ गया है, शो की शुरुआत हो गई और आप मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और भारत में बारिश आजकल बंद है, उमस है, गर्मी है। आई नो, मेरी भी कल अपनी फ्रेंड से बात हुई थी, वो कह रही थी बहुत गर्मी है, लेकिन यहाँ लंदन में कुछ राहत है, यूके में कुछ राहत है, टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो गया है, तो हम आजकल थोड़ा चैन से सो पा रहे हैं। और मैं यही चाहूँगी कि भारत में भी ऐसा मौसम हो जाए, ताकि वहाँ के लोगों को भी चैन मिले, हमारे लोगों को चैन मिले, शांति मिले। तो साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद ललित पटेल जी, थैंक यू। किशोर जा का ये गीत आपको अच्छा लगा, संतोष जी हैरो से थैंक यू, मानसी जी, संध्या भाव सर थैंक यू, गीता हर्षद जोशी जी, रोशनी, नरेंद्र भाग्या जी, मृदु जी, महेंद्र पटेल, प्रकाश सुथा जी नॉर्थ हॉल से, प्रीति बेल्जियम से, प्रज्ञा जी, दिनेश पोपट, मोहम्मद अयुब चौहान, थैंक यू सो मच कहते हैं। पहले आते साथ ही खूबसूरत गाना आपने प्ले किया, उसके लिए शुक्रिया, थैंक यू। आपने गीत को पसंद किया, उसके लिए शुक्रिया। अर्जुन जी थैंक यू, भरत गंगाराम जी, हंसा जी, सत्यनारायण सैनी जी भारत में, राजीव पटेल जी, हरीश खत्री, हमारे राजेश जी हमारे साथ हैं, कहते हैं वीकेंड तापमान थोड़ा बेहतर होगा और मौसम, कोशिश रहेगी कि ऐसे ही गीत सुनवाऊँ जो शायद आपने बहुत दिन से ना सुने हो। इसके अलावा रानी स्लाव से मिसेस शेख और हमारे राजकुमार जी, आपको भी सुबह सुबह की राम राम। चलिए अगला गीत आप सभी को डेडिकेट करते हैं।
1: ये है लाइका गोल्ड, Ritu Sharma live on Leica Gold Greater London. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: बिल्कुल ऋतु शर्मा अगला गीत आपको सुनवाने वाली है, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर बताएगी कि अगर दुबई घूमने जाना चाहते हैं तो साउथॉल ट्रैवल की बहुत ही बढ़िया डील्स चल रही हैं, उन्हें फ़ोन कीजिए 0208-574-8410 पर, और ये सब है एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
3: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
3: Visit TravelHubWorld.com.
4: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना, परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक, नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027
5: Kajal's Couture for every celebration, every moment, and every unforgettable entrance.
6: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
5: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewelry, accessories, and stylish outfits for men and women.
6: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
5: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
6: Visit Kajal's Couture. .co.uk.
7: Every morning a shopkeeper opens his doors.
8: Lights on, shutters up, staff ready.
7: But today's customers don't start on the high street.
8: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
7: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
8: They walk into your competitors.
7: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
8: Hearty Hanks. Hanks, the digital agency that doesn't play safe. Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
9: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
8: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
9: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
8: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
10: She can't hear you, but danger always hears her coming.
11: Sab dar bhag jaye.
10: Huma Qureshi stars in the explosive action thriller Baby Do Die Do with Sikandar Khair, Chunky Pandey and Seema Pava. Baby Do Die Do in cinemas now. Follow Bhudev Entertainment on Instagram for more information.
12: Is mahine mera

0: ब्यूटीफुल गाना भूपिंदर सिंह और रूना लैला की आवाजों में जयदेव के म्यूजिक पर घरौंदा फिल्म से हमने आपको सुनवाया, जिसमें अमोल पालेकर थे, साथ में थी जरीना बहा। और इस गाने को सुनवाने की एक खास वजह है, वो ये है कि इस गाने के जो गाने वाले हैं भूपिंदर सिंह जी, सैडली आज ही के दिन 18 जुलाई को 2022 में 82 की एज में इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। लेकिन उनके कुछ बहुत ही खूबसूरत गाने हैं जिन्हें हम अक्सर ही आपको सुनवाते हैं और आप उन्हें पसंद भी करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जन्म तो इनका फरवरी में हुआ था, इनकी बर्थ एनिवर्सरी फरवरी में आती है, और ये अमृतसर पंजाब के रहने वाले थे। और इनके फादर जो थे वो भी एक बहुत अच्छे संगीतकार थे और म्यूज़िक सिखाने में बड़े सख्त भी थे, और इसीलिए शुरुआती दौर में भूपिंदर सिंह को संगीत से डर लगता था। लेकिन बाद में उन्होंने संगीत में महारत हासिल की, और जानते हैं इन्होंने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो पर एज ए परफॉर्मर और गिटार वादक के रूप में की थी, यानी कि ये वहाँ पर गिटार बजाया करते थे। और मदन मोहन इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आए, उन्होंने इन्हें सबसे पहले गाने का मौका दिया। सोचिए, मदन मोहन अगर मौका नहीं देते तो हमें इतनी खूबसूरत आवाज़ कैसे सुनने मिलती। हकीकत इनकी पहली फिल्म थी जिसमें इन्हें एक गीत गाने का मौका मिला था, और इन्होंने कई बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ अपनी आवाज़ मिलाई है। लेकिन इनका पहला हिट गाना था मेरा आपका सबका फेवरेट, दिल ढूंढता है फिरसत के वही रात दिन, अगर समय हुआ तो ज़रूर बजाऊंगी। और ये इनके करियर का टर्निंग पॉइंट था ये गाना, इसके बाद इन्हें बहुत अच्छी पहचान मिली और बहुत खूबसूरत गाने गाए। आज ये गीत सुनवाया है, समय हुआ तो ज़रूर एक आध गीत इनकी आवाज़ में आपको और सुनवाऊंगी।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज आपको बता दें कि 1 pound के बदले में 130 rupees आपको मिलेंगे इंडियन रुपीस, 373 पाकिस्तानी रुपीस और 165 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 96.07 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. This is Like a Gold. Reminisce those classics.
0: जी हाँ बिल्कुल, आज 18th जुलाई है, सैटरडे का दिन है, ऋतु शर्मा आपके साथ है। और आपको बता दी चलूँ कि आज हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सुपरस्टार राजेश खन्ना जी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन इस दुनिया को छोड़कर गए थे 18th जुलाई 2012 में। तो आज की यादें में राजेश खन्ना को ही याद करेंगे, उनके कुछ गाने और उनके बारे में कुछ बातें आपको सुनवाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ याद दिला दें कि आज भूपिंदर सिंह की भी पुण्यतिथि है, आज वो छोड़कर गए थे। आज सुखविंदर सिंह अपना जन्मदिन मना रहे हैं, और इसके अलावा आज हमारी बॉलीवुड की देसी गर्ल समझ गए ना, हाँ, प्रियंका चोपड़ा, आज उनकी बर्थडे है। उसके अलावा भूमि पेडनेकर की आज बर्थडे है। आज बहुत सारे साथियों का जन्म भी हुआ था, और अगर आपकी भी बर्थडे है तो भाई हमारी ओर से जन्मदिन की बधाइयां लीजिए। और चलिए अगला गीत आप ही को डेडिकेट करते हैं।
3: ये है Like a Gold. Weddings, celebrations, corporate events, Ragasan सब कुछ efficiently handle करते हैं। Perfect location ढूंढने से लेकर incredible themes design करने तक, world class cuisine से हर छोटी बड़ी requirement तक manage करते हैं। 30 साल से ज्यादा का experience हर event को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com। Location, design, management या catering, Ragasan.
4: Herald
1: Bolt, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस
5: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
6: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
7: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Southall Travel.
7: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
6: Southall Travel can take you there.
1: Southall Travel, at all protected.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
8: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
8: High appreciation.
9: In Dubai.
10: यार कई बार मुझे अपने गांव के छोले भटूरे याद आते हैं. वही स्वाद, वही खुशबू.
11: तो रुक क्यों रहा है? वही देश का असली स्वाद अब मिलता है हाउंसलो के बीकानेर वाला में.
10: सच?
11: अरे बिल्कुल. छोले भटूरे, राज कचौड़ी और मिठाइयों का असली टेस्ट, जैसे माँ के हाथों का बना हो.
12: बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया, अब हाउंसलो हाई स्ट्रीट में. आज ही विजिट करो.
13: sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
14: Himalaya Carpets ki dhadakti hui sale. Garmi se keemte pighalti hui sale. Room size remnants 30 pounds se shuru. Tamam roll stock par marked prices par 20% off. Laminate flooring from 9 pounds square meter. LVT flooring from 12 pounds square meter. Rugs, beds, sofas सब पर 50% ऑफ. कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है. चूकिए नहीं, विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल.
15: लंदन वालों ध्यान से सुन लो, के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम में आइए या फिर kefurniture.co.uk पर जाएं.
16: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
17: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts. Look for any changes. Check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
1: Classics to make your weekends feel good. This is Ritu Sharma on Like a Gold.

0: साथ।
1: राजेश खन्ना पर पिक्चराइज दो बैक टू बैक गाने आपने सुने, क्योंकि आज हम राजेश खन्ना को ही याद कर रहे हैं, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है और आप सबके फेवरेट एक्टर हैं राजेश खन्ना, जिन्हें भारत का फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। 1960 से लेकर 1970 के दशक में उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी दीवानगी इस कदर थी कि ना तो उनसे पहले और ना ही उनके बाद वैसी दीवानगी किसी और अभिनेता के लिए देखी गई। लोग प्यार से उन्हें काका कहा करते थे, और आपने उनके बारे में सुना होगा कि राजेश खन्ना ने जो कुर्ता, जिसे गुरु कुर्ता कहते हैं, छोटा कुर्ता, और जो सफारी सूट पहना, वो उस दौर का सबसे बड़ा फैशन बन गया। उनकी साइड पार्टिंग वाला हेयर स्टाइल, उनकी आंखें झपकाने की अदा और गर्दन टेढ़ी करके बात करने की अदा पर पूरा देश फिदा था। उनके बारे में कहा जाता है कि जब राजेश खन्ना किसी स्टूडियो या लोकेशन पर शूटिंग करने जाते थे, तो वहां मौजूद उनकी सफ़ेद कार को फैंस, खास तौर पर लड़कियां, चूम चूम कर लिपस्टिक के दाग से गुलाबी कर दिया करती थी, और उनकी कार जाने के बाद फैंस उस रास्ते की धूल को अपनी मांग में सिंदूर की तरह भरती थी। क्या ये सब बातें सच है? यकीन नहीं होता, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि इस कदर थी राजेश खन्ना की दीवानगी। और आज उन्हीं राजेश खन्ना के बारे में कुछ बातें, उनसे जुड़े हुए किस्से आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज की यादें में।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: लेकिन उससे पहले याद दिला दे कि 1 pound के बदले में आज आपको मिलेंगे 128.9 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions do apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit SBIUK.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai Leica Gold, 10:35 AM.
4: Leica Radio.
2: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate, and for other legal requirements.
1: तो आज इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में थर्ड प्लेस के लिए मैच होने वाला है, और इस मैच को आप जरूर देखेंगे, हम सब चेयर अप करेंगे इंग्लैंड के लिए। लेकिन बता दें कि आप बिल्कुल मत भूलिए अपना 15 मिनट का फ्री लीगल एडवाइस लेना विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
2: दिस अपडेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय रैक लॉ सॉलिसिटर्स। कॉल 0203-345-2000 और विजिट raklaw.co.uk। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: मैराथन फिल्म से लिया था ये गाना, जो राजेश खन्ना की कमबैक फिल्म थी। और ये फिल्म भी बहुत बड़ी हिट हुई थी और इस फिल्म ने ये प्रूव कर दिया था कि सुपरस्टार हमेशा ही सुपरस्टार होता है। और आज राजेश खन्ना के बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं आज की यादें में।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: राजेश खन्ना की फिल्में हमारे लिसनर्स जो हैं, जो उनके फैंस हैं, उन्होंने कईयों बार देखी होंगी। लेकिन देखिए, जीवन में एक चीज़ होती है कर्मा, और ये कर्मा कैसे वापस आता है, मतलब मैं फिल्म की बात कर रही हूँ। कभी कभी जो किरदार हम फिल्मों में जीते हैं वो जीवन में अक्सर ही वैसा ही होता है, और राजेश खन्ना के साथ भी वैसा ही हुआ। उन्होंने, याद होगा आपको, एक किरदार निभाया था फिल्म आनंद में, एक ऐसे मरीज का रोल उन्होंने निभाया था जिसका नाम था आनंद सहगल, जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित था। लेकिन अपनी ज़िंदगी का हर पल उसने हंसते मुस्कुराते और दूसरों में खुशियां बांटते हुए जिया था। और हमने देखा है कि फिल्म के आखिरी सीन में राजेश खन्ना यानी कि आनंद दम तोड़ चुका होता है, और उसके दोस्त बाबू मोशाय, जो अमिताभ बच्चन बने थे, उनकी बॉडी के पास बैठकर फूट फूट कर रोता है और पागलों की तरह चिल्लाता है, आनंद तुम बोलते क्यों नहीं, बोलो आनंद बोलो। और तभी अचानक कमरे में टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता है और उसमें राजेश खन्ना की पहले से रिकॉर्ड की हुई आवाज़ गूंजती है, और वो डायलॉग आप सबको याद होगा कि बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, जह बना उसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों से बंधी है। और ये सीन देखकर सिनेमा घर में बैठा हर इंसान उस समय ज़रूर रो पड़ा होगा, और आज भी ये सीन हमारी आंखों में आंसू ले आता है। लेकिन देखिए, समय चक्र कैसा होता है कि 2012 में जब राजेश खन्ना बेहद बीमार थे और मुंबई के अपने बंगले में आशीर्वाद में अपने जीवन के आखिरी दिन गिन रहे थे, जो कैंसर उन्होंने फिल्म आनंद के पर्दे पर जिया था, लगभग वैसा ही दर्द वो असल जीवन में भी झेल रहे थे। और जब राजेश खन्ना को लगा कि अब उनका अंतिम समय नज़दीक आ गया है, तो उन्होंने, जानते हैं, बिल्कुल ही आनंद की तरह एक अजीब और बेहद इमोशनल इच्छा जताई। उन्होंने अपने दामाद अक्षय कुमार और अपने परिवार के सामने एक वॉइस रिकॉर्डर मंगाया, और काका ने अपनी बेहद कमज़ोर और कांपती हुई आवाज़ में अपने फैंस, अपने दोस्तों और पूरी दुनिया के लिए एक आखिरी संदेश रिकॉर्ड किया। और जानते हैं उन्होंने इस संदेश में क्या कहा था? लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि जब वो इस दुनिया से चले जाएँ तब इस संदेश को सुनवाया जाए। उन्होंने जो आखिरी समय में टेप रिकॉर्ड किया था, उसमें उन्होंने अपने फैंस के नाम पर एक संदेश दिया था कि मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं अपने दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं, मैं हमेशा आपकी यादों में, गानों में और फिल्मों में जीवित रहूँगा। अलविदा। और जब लोगों ने उनकी डेथ के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, उनकी आवाज़ में ये आखिरी संदेश सुना, तो हर किसी को आनंद का वो क्लाइमैक्स सीन याद आ गया। जिस तरह से फिल्म में मौत के बाद आनंद की आवाज़ गूंजी थी, उसी तरह 41 सालों के बाद असल जिंदगी में भी काका अपनी मौत के बाद अपने चाहने वालों से बात कर रहे थे। और कहते हैं कि बॉलीवुड के इतिहास का ये सबसे भावुक करने वाला इत्तफाक माना जाता है, जिसने पहले सुपरस्टार की विदाई को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया।
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.
0: उनकी फिल्म का अगला गीत सुनवाने से पहले एक बार आपको याद दिला दूं कि लाइका रेडियो नेटवर्क जो जगन्नाथ जी की एनुअल रथ यात्रा है, उसमें साथ दे रहे हैं। ये कल यानी कि 19 जुलाई को होगी, शुरू होगी SKSST कैंटन हैरो टेम्पल से और ख़त्म होगी श्री स्वामी नारायण टेम्पल स्टैनमोर में। वहां पर आप जा सकते हैं, जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने का भी आपको मौका मिलेगा और ये जाएगा हैरो और ब्रेंड की स्ट्रीट से होता हुआ। लाइव अपडेट्स के लिए वहां पर रवि शर्मा सरिता सबरवाल होंगे और अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कीजिए sksst.org पर।
1: This is Ritu Sharma.
2: Hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m, Leica Gold and Leica Radio Midlands.
1: Leica Extra Podcast Update.
0: तो भाई लाइका एक्स्ट्रा का नया पॉडकास्ट आ गया है, नया एपिसोड आ गया है जिसका टाइटल है लाइका प्रेजेंटर्स टेक ओवर, और इसे आप सुन सकते हैं। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है यूट्यूब, स्पॉटिफाई, अमेजन और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां जाकर आप इसे सुन सकते हैं।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
3: ये है
4: लाइका गोल्ड।
5: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: Visit travelhubworld.com.
9: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: Chawal ho best, sab kare test. Disha rice ka hai zamana. Disha basmati rice.
11: Disha rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha rice, come down and taste the difference.
12: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राज कचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है,
13: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्स्लो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में।
12: सच?
13: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
14: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड, IG2 6HA। कॉल करें 07555-506-015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन इलफोर्ड।
15: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
16: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
15: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
16: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
15: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
16: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
17: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath. Over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
18: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
19: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. on this week's Leica Extra podcast. Leica Radio Network presenters get candid about films, lifestyle, and controversies.
4: It is. You have to be really dedicated to be able to
7: become
4: a radio presenter. Yeah. So you're giving sacrifices around you as well.
20: True.
4: Mm. Whether it's at home or whether it's family.
1: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Cool music for a super hot summertime on Leica Gold.

0: थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन के करियर को संवारने में राजेश खन्ना का भी बहुत हाथ था। जब राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन के साथ आनंद फिल्म की थी, तभी उन्हें समझ में आ गया था कि इस लड़के में दम है, ये आगे जाकर कुछ अच्छा ही करेगा। और जब नमक हराम फिल्म में ऋषिकेश मुखर्जी ने एक बार फिर से राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को साथ साथ लिया, तब राजेश खन्ना को समझ में आ गया कि पर्दे पर अमिताभ बच्चन की जो दमदार एक्टिंग है उसे लोग ज़रूर पसंद करेंगे। और उन्हें लगा कि अब शायद दोनों के कंपैरिजन में मैं कुछ धीमा पड़ जाऊं। वो इस बात को समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने अमिताभ बच्चन को हमेशा सपोर्ट किया और इसीलिए उनकी मौत पर अमिताभ बच्चन बेहद दुखी थे। और उन्होंने उन्हें याद करते हुए लिखा कि जब वो आनंद के सेट पर पहली बार राजेश खन्ना से मिले तो वो काका को एक टक देखते रह गए थे। उनका कहना था कि मैंने उनके जैसा स्टारडम कभी किसी का नहीं देखा। जब वो चलते थे तो लगता था कि वक्त ठहर गया है। उनके जाने से भारतीय सिनेमा का एक पूरा युग समाप्त हो गया है और वो मेरे लिए हमेशा पहले सुपरस्टार रहेंगे। हालांकि जो हीरोज़ होते हैं उनमें कंपटीशन भी होता है, लेकिन अमिताभ बच्चन के दिल में राजेश खन्ना के लिए बेहद सम्मान था।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 130 भारतीय रुपए, 373 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टका।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Leica Group. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 96.07 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma. This is Leica Gold.
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02 0 3963 5757. Greens by Danu. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
9: गारंटेड।
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल।
9: फोन 02085748410।
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
10: लंदन वालों ध्यान से सुन लो, के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर के फर्नीचर.co.uk पर जाएं।
11: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
12: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back

0: your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
1: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
0: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
1: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
2: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208 922 3444. Our line
3: from scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands. Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
4: Rice khareedne ka perfect time aa gaya hai. Buy 20 kg Tilda Basmati rice and get 1.5 kg Gulab Kenyan tea absolutely free. Mix and match Tilda Basmati packs to make up to 20 kgs. Yani ke 4 times 5 kg, ya 2 times 10 kg, ya 1 times 20 kg. This special offer is available at all quality food stores. Hurry, offer ends while stocks last. Quality foods, quality or value, dono ek saath.

0: ਗੱਪੇ ਅਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Mamster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma on Like a Gold Greater London
3: सुनो
4: कहो
3: कहा
4: सुना
3: कुछ हुआ क्या
4: अभी तो नहीं कुछ भी

0: राजेश खन्ना और मुमताज ने साथ में अनेकों फिल्मों में काम किया है और इसलिए आज इन दोनों की जोड़ी का कोई गाना ऋतु ना सुनवाए ऐसा कैसे हो सकता है। ये थी फिल्म आपकी कसम जिसमें राहुल देव बर्मन का म्यूजिक था और अगला गीत भी इसी जोड़ी पर पिक्चराइज है। और आज हमने राजेश खन्ना को याद किया है और आपको बता दें कि जब मुमताज शादी रचाकर चली जाने वाली थी तो राजेश खन्ना मुमताज से नाराज हो गए थे। उनका कहना था कि अभी समय नहीं है शादी रचाने का, अभी हमारी जोड़ी हिट है, लोगों को हमारा काम पसंद है, हमारी फिल्में हिट हो रही हैं, शादी के लिए ज़िंदगी पड़ी है, शादी बाद में कर लेना। लेकिन मुमताज़ ने राजेश खन्ना की बात नहीं मानी, वो किसी को दिल दे चुकी थी और वो अपना घर बसाना चाहती थी और जानते हैं इस बात से राजेश खन्ना बहुत नाराज़ भी हो गए थे। एनीवेज उस समय जो हुआ होगा वो हुआ होगा, लेकिन फ़िलहाल इस सुपरहिट जोड़ी का एक और गाना सुनवाती हूँ आज की यादें का। शायद ये आखिरी गाना होगा, शायद क्या 100% ये आखिरी गाना होगा और इस गाने के बाद हम आपसे मिलेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। और हमारे राजेश जी ने भी याद दिलाया है कि आपको पता होगा कि आनंद फिल्म के लिए राजेश खन्ना ने कोई फीस नहीं ली थी। नहीं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपने ये हमारे साथ शेयर की है तो सच ही होगी। एनीवेज कुछ बातें आज इमोशनल बातें मैंने राजेश खन्ना के बारे में आपके साथ शेयर की। वैसे तो आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि सुपरस्टार्स के बारे में लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहते हैं, लेकिन चलिए सुनवाती हूँ अगला गाना आपकी ही एक और फेवरेट फिल्म से।
1: Reminisce those classics on Like a Gold.

0: कितने भी तू कर ले सितम, ये प्यार न होगा कम, सनम तेरी कसम। क्या गाना है, सनम तेरी कसम फिल्म से था ये गाना, म्यूजिक बाय आरजी बर्मन। और उससे पहले आपने किशोर शर्मा और महेश शर्मा यानी कि शर्मा जोड़ी के म्यूजिक पर सनम बेवफा फिल्म का गीत सुना। और लीजिए इन दो गीतों के साथ प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल शुरू हो गया है। ये है ऋतु शर्मा शो ऑन लाइका रेडियो नेटवर्क, और मैं ऋतु शर्मा आप सभी को एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और आपके ढेरों मैसेजेस पहुँचे हैं और आपने बहुत सारे गाने सजेस्ट भी किए हैं बजाने के लिए, लेकिन राजेश खन्ना के गाने इतने सारे हैं कि मैं आने वाले शोज में आपको सुनवाती रहूँगी। आज तो पूरे शो में आ ही नहीं सकते थे, लेकिन थैंक यू आज की यादों को पसंद करने के लिए और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई उसे सुनने के लिए। सो बस आगे बढ़ जाते हैं और इस आवर में हम थ्री वर्ड्स गेम खेलते हैं, कुछ ब्लैक एंड वाइट क्लासिक्स भी सुनवाती हूँ और आर्टिस्ट ऑफ द वीक का गीत भी मैं आपको सुनवाऊंगी। लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं और वो ये है कि लाइका रेडियो नेटवर्क एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स है दिवाली स्टोरी के। ये एक म्यूजिकल शो है जो रॉयल एल्बर्ट हॉल में जब हुआ था तो सोल्ड आउट हो गया था, और इसीलिए अब ओवो अरीना वैमली में फिर से होने जा रहा है संडे 27 सितंबर को, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जा पाए थे। तो ओवो अरीना, याद रखिए, ओवो अरीना वैमली में 27 सितंबर को फिर से होने जा रहा है। और ये एक स्टूडेंट प्री शो है, टेक्स प्लेस फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM एट द मेन इवेंट फ्रॉम 6:15 PM टू 9:30 PM। आपको फिर से बता दें, स्टूडेंट प्री शो टेक्स प्लेस फ्रॉम 5 PM टू 4:45 PM एंड द मेन इवेंट फ्रॉम 6:15 PM टू 9:30 PM। और इसको क्रिएट किया है, इसे बनाया है सनातन इवेंट्स फाउंडर के नितिन पालन MBE ने। और इसमें जो कोरियोग्राफी हुई है वो बॉलीवुड डांस स्कूल टीम ने की है। इस इंग्लिश भाषा के प्रोडक्शन में रामायण को 4 अध्यायों में 7 विशेष गानों के साउंड ट्रैक और एक पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की टीम ने जीवंत किया है। तो ये एक मज़ेदार शो है, आप ज़रूर देखने जाइए। टिकट्स अवेलेबल है www.diwalistory.com पर।
1: WhatsApp message Leica Gold now on 0744-23-23-23।
0: जी हाँ, ये है हमारा WhatsApp नंबर जहाँ पर आपको अपना मैसेज भेजना है, और वो तब जब आप अपना हमारा गीत पहचान ले, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ आज के थ्री वर्ड्स गेम वाले थ्री वर्ड्स। तो तैयार हैं? चलिए, क्योंकि इस आवर में हम थ्री वर्ड्स गेम खेलते हैं और उन 3 वर्ड्स को मैं बॉलीवुड के किसी एक गाने से लेती हूँ और आपको पहचानना होता है कि गाना कौन सा है। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है तराना, दूसरा वर्ड है निगाहें और तीसरा वर्ड है जमाना। ज़रा लिख लीजिए, फिर आप पूछते हैं मुझसे कि 3 वर्ड्स कौन से थे, और कई बार मैं जवाब भी नहीं दे पाती। तो पहला वर्ड है तराना, दूसरा वर्ड है निगाहें, हाँ लिख लिया निगाहें, और तीसरा वर्ड है जमाना। ये 3 वर्ड हैं और आपको है गाना पहचानकर मुझको बताना। रफ़ी साहब की आवाज़ है, 1973 में आई थी FM, और गणेश का म्यूज़िक है। लीजिए, मैंने आपके लिए कितना आसान कर दिया गणेश का म्यूज़िक है, रफ़ी साहब की आवाज़ है, 1973 की फिल्म है। एंड आई रिपीट वंस अगेन, तराना, निगाहें, जमाना, बहुत सुंदर गाना है, लेकिन कौन सा है आपको बताना है। बताइए जरा हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज भिजवा कर।
1: WhatsApp message Leica Gold now on 0744-23-23-23. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिल सकते हैं 129.9 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर करवाना होगा by SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी लागू रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: We get it. Making tax digital can sometimes feel daunting, but with Xero's HMRC recognized software, you quickly get to feeling confident. If you're a sole trader or landlord whose income tax is going digital, not only is Xero MTD ready, it also gives you better control of your finances, like having the clear financial visibility you need every quarter to avoid end-of-year tax surprises. Change the way you see MTD. Search MTD Ready with Xero.
3: Yeah, like a gold.
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
5: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड
5: विजिट travelhubworld.com
6: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
7: 25? Seriously?
6: Sounds like Ojo time.
7: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
6: Sorry about the wait. How can I help?
7: You can help me celebrate. I won.
8: Feel the fun. Play Ojo.
9: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply. Sadco.

0: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: रेडिंग तैयार हो जाइए, रेडिंग मेला आ रहा है पाम पार्क में 1st और 2nd अगस्त दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक। इंजॉय कीजिए लाइव परफॉर्मेंसेज बाय हरभजन तलवार, मैस बोनाफाइड, मानक ई एंड सोना वालिया, प्लस लाइव सिंगिंग, डांस, शॉपिंग, टेस्टी फूड, फन फेयर, ढोल और डीजे। एंट्री बिल्कुल फ्री। मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 07517801701। रेडिंग मेला पाम पार्क, वोकिंगहम रोड, रेडिंग, RG6 1LF। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो।
2: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
3: Relax, I've booked the Uber already.
2: How? My roaming isn't even working yet.
3: I switched to Simsy before we left London.
2: Simsy? Since when are you the tech expert?
3: Since I decided I want a stress-free holiday.
4: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
5: T's and C's apply.
6: हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज एग्रीमेंट्स 30 pounds से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर, रग्स, बेड्स, सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं। विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।
7: हे फ्रेंड्स, के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
8: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स।
7: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
9: She can't hear you, but danger always hears her coming.
10: Sab dar bhag jayega.
9: Huma Qureshi stars in the explosive action thriller Baby Do Die Do with Sikandar Khair, Chunky Pandey and Seema Pava. Baby Do Die Do in cinemas now. Follow Bhudev Entertainment on Instagram for more information.
11: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
12: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
11: So where do we find something like that now?
12: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our elders use it.
13: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
14: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
15: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: जी हाँ, ये थी महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजें। फिल्म का नाम वक्त और इसका म्यूजिक दिया था डायरेक्टर पंडित रविशंकर शर्मा ने, और वो ही है हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और आगे बढ़ने से पहले, अपना ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आज हमारे बहुत ही प्यारे लिसनर हैं विजय गुनोवा जी, अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो विजय जी, हम सभी की ओर से आपको जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाइयाँ, और आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक के दोनों गाने आप ही को डेडिकेट करते हैं। इसके अलावा जयश्री जी, आप जब हम बीकानेर वाला गए थे, आप मिलने आई थी, बहुत अच्छा लगा, इतनी दूर क्रॉइडन से आप हमें मिलने आई थी, थैंक यू सो मच उसके लिए। वटफर्ड से हमें सुरेश पटेल जी मिलने आए थे, और इसके अलावा लियाकत अली वहाँ पर थे, और भी बहुत सारे लिसनर्स थे जिनके नाम मुझे याद नहीं है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये आपका प्यार ही है कि आप अपना समय निकाल कर मुझसे मिलने आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और हमेशा ही होती है जब भी उन लिसनर्स से मिलने का मौका मिलता है जो इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भिजवाते हैं, और जब वो सामने आते हैं और बताते हैं कि मैं ये हूँ, तो लगता है वाह, अच्छा लगता है। सो थैंक यू, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा क्या कह रही थी, देखो बातों में मैं भूल गई। चलिए आगे बढ़ने से पहले, आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला शुरू करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दें, और ये इन्फॉर्मेशन है उन सब के लिए जो कि पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं। आपने बच्चों को अपने बच्चे के जीवन की सबसे अच्छी शुरुआत देने के लिए ये सुनिश्चित करें कि उनके सभी बचपन के टीके यानी कि वैक्सीनेशन समय पर लग चुके हों। टीके जो होते हैं वैक्सीनेशन, आपके बच्चे को खसरा, काली खांसी जैसी गंभीर बीमारियों से बचाते हैं जो हमारे समुदाय में आसानी से फैल सकती है। यदि आपके बच्चे का टीकाकरण नहीं हुआ है तो वो इन बीमारियों से सुरक्षित नहीं है। इंग्लैंड में बचपन के टीके हर साल 5,000 से अधिक लोगों की जान बचाने में मदद करते हैं, और ये जानकर आपको भरोसा होगा कि NHS द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सभी बचपन के टीके दुनिया भर के लाखों बच्चों को सुरक्षित रूप से लगाए जा चुके हैं। समय पर टीके लगवाना सबसे बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन यदि आपके बच्चे का कोई टीका छूट गया है तो आप अब भी अपने GP से संपर्क करके वो छूटा हुआ टीकाकरण पूरा करवा सकते हैं। क्या आपके बच्चे के सभी टीके समय पर लग चुके हैं? आप अपने बच्चे की रेड बुक पर देखें या फिर अपने GP प्रैक्टिस से बात करें। अधिक जानकारी के लिए nhs.uk/childhoodvaccinations पर जाइए।
1: ये है Like a Gold Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: तो चलिए आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला शुरू हो गया है रफी जी और लता मंगेशकर की आवाजों में ये पहला गाना।

0: यस मोहम्मद रफी और लता जी की आवाजों में था ये गाना। और इस गाने को सुनकर प्रीति क्या बात है, आपने नाग की फोटो मुझे भेज दी है, क्यों डरा रहे हो मुझे, इसको देखकर बहुत डर लगता है, हे भगवान आपने क्या कर दिया। लेकिन ये धुन बहुत ही खूबसूरत थी जिसे आप सभी ने पसंद किया है। ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना। और आपके ढेरों मैसेजेस मुझे लगातार मिलते जा रहे हैं। गिरीश जी कहते हैं कि मधुबाला में माधुरी जी की झलक दिखती थी, या ये कहूँ कि माधुरी दीक्षित में मधुबाला की झलक दिखती है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं और आपने बिल्कुल सही कहा है। और चलिए अब सुनवाते हैं आपको आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना। लेकिन साथ ही साथ आपके आंसर्स भी मुझे मिलते जा रहे हैं और किन्होंने सही सही जवाब दिए हैं मैं बताऊंगी थोड़ी ही देर में। लेकिन पहले
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
3: This Super Hit Track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: यस, लता जी और गीता दत्त की आवाजें, फिल्म यहूदी, और ये है हमारे आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का दूसरा गाना। नरेन पटेल जी कहते हैं मेरा फेवरेट गाना है, बिल्कुल हमने आपको डेडिकेट किया। एंड राजेंद्र सिंह कालरा जी, आपने भी सही बताया है, फागुन में आशा जी की आवाज थी, क्योंकि लता जी ने तो ओपी नैयर के साथ कभी गाया ही नहीं, यहाँ पर लता मंगेशकर लिखा है। एनीवेज वी हैव टू करेक्ट इट, बट आगे बढ़ जाते हैं। और आज के थ्री वर्ड्स गेम का जवाब किस किस ने दिया है सही बताने का समय आ गया है, तो ध्यान से सुनिए। उल्लास टोरंटो से, योर आंसर इज करेक्ट। हाजरा जी, प्रीति बेल्जियम से, रोशनी जी, परत गंगाराम जी, स्वाति बेस वॉटर से, नीलेश तन्ना जी, दिव्या जी हैरू से, विनोद जी, चंदू शाह, गिरीश जी इंडिया से, नरेन पटेल, हितार्थ एंड सार्थक, दिनेश पोपट जी, निर्मल एंड किरीट जी, निवेदिनी पटेल, अयूब चौहान, उषा खोड़ा, अर्जुन जी, शीतल, तोची, कुकी, रमा व्यास, जैनुद्दीन, रानी सोहानी, आप सभी ने गाने को सही सही पहचान लिया है। और अब सही सही पहचान लिया है तो मैं कौन होती हूँ जो इस गाने को ना बजाऊं? चलिए सुनवाती हूँ आपको आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना, आपसे बस थोड़ी सी देर में।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: लेकिन उससे पहले याद दिला दे कि घूमने जाना

0: now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02023963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs अप्लाई।

0: ब्यूटीफुल गाना, ब्यूटीफुल म्यूजिक। गणेश ने इसका म्यूजिक तैयार किया था रफी साहब की आवाज़, और ये था हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना, जिसे ज़्यादातर साथियों ने सही पहचाना था। यस संध्या भावसर, आपने भी बिल्कुल सही पहचान लिया था। कितना रोती हो और कितनी जोर से रोती हो। जैनुद्दीन कहते हैं कि मेरा फेवरेट गाना है मेरे नाम कीजिए, लीजिए मैंने ये गाना आपके नाम किया और बस अब तो जाने की बेला आ गई है। गिरीश जी कहते हैं पता ही नहीं चला 3 घंटे कब निकल गए, तो मैं भी कहूँगी मेरा भी यही हाल है, मुझे लग रहा है अरे जाने का समय हो गया इतनी जल्दी। एनीवेज जाने का समय हो गया है तो जाना ही पड़ेगा, जाते आते एक गाना और सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
2: ये है Leica Gold.
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज ये 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 129 भारतीय रुपए, 373 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास।
3: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
3: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 96.07 pounds per gram.
3: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: तो लीजिए समय हो गया है।
2: लाइका गोल्ड।
4: हाय, मैं हूँ अश्विनी। हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइका गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी। फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए।
0: समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज तक, और न्यूज के उस पार अनुराग होंगे लाइका गोल्ड पर, रूबीन फजीला होंगी लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर, और आज हमारी नई प्रेजेंटर आपका साथ देंगी, जिनका नाम है आनंदी, लाइका रेडियो पर और लाइका रेडियो मिडलैंड पर। तो मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी। अपना ख्याल रखिए और इस शो को आप लिसन बैक पर दोबारा भी सुन सकते हैं। कल तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।
1: This is Leica Gold.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Chawal ho best, sab kare test. Disha rice ka hai zamana. Disha basmati rice.
8: Disha rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save, Canton Road. Disha rice, come down and taste the difference.
9: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
10: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
11: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
12: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
11: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
12: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
11: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
13: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
14: Gajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
15: Discover Gajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
14: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
15: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
14: Gajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
15: Visit Gajal's Couture.
16: भाइयों बहनों, खुशखबरी, 1905 से असली स्वाद बीकानेर वाला अब साउथ हॉल में इंडियाज फेमस छोले भटूरे, अ मैच मेड इन हेवन। फैमिली को लाओ, फ्लेवर्स ऑफ इंडिया का मजा लो। मिले 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल, UB2 4DB, बीकानेर वाला नाउ ओपन। बीकानेर वाला नाउ इन योर नेबरहुड।
17: अप नेक्स्ट गोल्डन रॉक विद अनुराग ऑन लाइक अ गोल्ड। Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: आशा दाई और अमित कुमार साहब की नटखट आवाज में लव स्टोरी यानी कि सुपर हिट फिल्म। जब भी इस फिल्म का नाम आता है तो सुपर हिट गाने, सुपर हिट फिल्म और सुपर हिट स्टारकास्ट। स्टारकास्ट में कौन आप जानते ही हैं, जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार साहब के साहबजादे की डेब्यू फिल्म थी। कुमार गौरव साहब और विजेता पंडित की भी ये पहली फिल्म थी, डेब्यू फिल्म थी, और इस फिल्म ने कमाल कर दिया था, खासतौर पर आर डी बर्मन के संगीत ने, और एक फ्रेश स्टोरी हम लोगों के सामने आई थी और लोगों ने देखा और पसंद किया। गाने बड़े मशहूर हुए आर डी बर्मन साहब के, और ऑन स्क्रीन जो रोमांस दिखाया गया, शूटिंग की जो लोकेशन दिखाई गई, विजेता पंडित और कुमार गौरव के बीच की जो केमिस्ट्री दिखाई गई वो कमाल करके सिल्वर स्क्रीन पर, और रातों रात बन गए कुमार गौरव साहब एक सुपरस्टार। हालांकि दिलचस्प ये भी है कि इस एक इकलौती ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी जिसमें ओरिजिनल क्रेडिट में डायरेक्टर का नाम नहीं आता है। हालांकि फिल्म के निर्माता राजेंद्र कुमार और राहुल रबेल हुआ करते थे, लेकिन प्रोड्यूसर साहब राजेंद्र कुमार साहब अपने बेटे की फिल्म को लेकर बड़ा ही संजीदा थे और किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए थोड़े से मतभेद हो गए थे, लेकिन बाद में सब सुलह हो गई जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। जैसे कि हिट आप लोगों के प्यारे प्यारे संदेश, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया रितु जी के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुपर डुपर इस वीकेंड वाली पाठशाला में आप लोगों को शामिल करते हैं अगले एक बड़े ही प्यारे गाने। फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल। सुनते रहे
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: India में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 128.90 पैसे। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: To whoever finds this letter, my car broke down. There is nothing nearby. And they've already eaten my meal deal sandwich. Please tell my wife that I love her and that she was right. This jacket isn't waterproof. Signed, Daniel S.
3: Oh, actually, scrap that. Green flag's just arrived. Blimey, less than an hour.
4: Local rescue, nationwide. Nothing beats near. Green flag.
5: On average, we get to breakdowns in under an hour based on app and phone call outs combined. See greenflag.uk/data.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
6: Himalaya carpets ki thadakti hui sale. Garmi se keemte pighalti hui sale. Room size remnants 30 pounds se shuru. Tamam roll stock par mark prices par 20% off. Laminate flooring from 9 pounds square meter. LVT flooring from 12 pounds square meter. Rugs, beds, sofas sab par 50% off. Carpets ki toh ye sabse badi sale hai. Chupiye nahi. Visit Himalaya Carpets .com or come at Himalaya Carpet South Hall, opposite the Ealing Hospital.
7: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Bedianath with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
8: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208 922 3344 a 24-hour line. Start to

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: 18 जुलाई 2012 का दिन, भारत के की मैनचेस्टर जिसे कहा जाता है, मुंबई सिटी, समंदर के किनारे कार्टर रोड नाम की एक जगह और वहाँ एक खूबसूरत सा बंगला। तमाम सारे लोगों को सिर्फ उस बंगले से इसलिए मोहब्बत थी क्योंकि उनके दिल का तारा उस बंगले में रहता था। उस बंगले का नाम था आशीर्वाद। आशीर्वाद से लेकर मुंबई के पवन हंस इलाके के क्रिमिनेशन सेंटर तक एक शव यात्रा, लाखों हजारों लोग उसके इर्द गिर्द, सबकी आंखें नम, चाहे वो आम इंसान हो या फिर कोई सुपरस्टार। उस जुलूस में, उस हुजूम में, उस शव यात्रा में मैं भी शामिल था। और बात मैं कर रहा हूँ हिंदी सिनेमा के शायद इकलौते सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब की, जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। 18 जुलाई 2012 को उन्होंने अपने फैंस को, इस दुनिया को अलविदा कहा था और बॉलीवुड के आसमान में सितारा बनकर चमकने लगे थे। उस दिन को मैंने बड़े करीब से देखा और क्योंकि मैं उस दिन इस शव यात्रा को कवर कर रहा था, तमाम सारे लोग हम सब मौजूद थे और जितने भी लोग वहाँ पर आ रहे थे, पता था सबको कि अब काका की एक झलक भी उन्हें नहीं मिल पाएगी। लेकिन उस जो गाड़ी थी जिसमें उन्हें ले जाया जा रहा था, उसके आसपास लोग उसे चूम रहे थे, छू रहे थे और कह रहे थे काका हम तुम्हें कभी नहीं भुलाएंगे। सदाबहार हीरो और हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार जिनकी स्टारडम का आज भी कोई मुकाबला नहीं, उन्हीं की फिल्म को, उन्हीं को याद करते हुए, हालांकि एक बढ़िया सा ट्रिब्यूट आपको देंगे कलवाली जी, लेकिन उससे पहले क्योंकि आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है तो उनकी फिल्म से जुड़ा हुआ एक गाना हम आपको सुनाते हैं, आप लोगों ने याद कर सकें।
0: On Rag with Golden Rag.

0: मुझसे प्यार है।
1: काका हालांकि कह रहे हैं कि लास्ट में सोमवार है, आज वैसे शनिवार है, लेकिन फिल्म का संगीत कमाल का, एच डी बर्मन साहब और काका और शर्मिला टैगोर, यानी कि राजेश खन्ना साहब और शर्मिला टैगोर साहब जी की कमाल की ये फिल्म, कमाल की केमिस्ट्री, सुपर डुपर हिट फिल्म। कहा जाता था भाई ऊपर आका नीचे काका, बिल्कुल सही बात थी। जिस शहर में वो रहते थे, जिस इलाके में काटर रोड में रहा करते थे, सुना जाता है कुछ सीनियर फेलो जर्नलिस्ट बताया करते थे कि जब काका का दौर चल रहा था, जब उनका स्टारडम सबके ऊपर सर चढ़कर बोल रहा था, तो इतनी भीड़ हो जाया करती थी उस इलाके में कि आवाजावन में, ट्रैफिक में बड़ी मुश्किलात हुआ करती थी। तो मुंबई पुलिस ने एक स्पेशल थाना क्रिएट किया, काटर रोड थाना, जहाँ पर इस ट्रैफिक व्यवस्था को संतुलित किया जा सके और जो हुजूम आता है उसे व्यवस्थित तरीके से, एक लाइनबद्ध तरीके से काका के घर आशीर्वाद जो बंगलो था उसके इर्द गिर्द तक पहुँचाया जाए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा प्यार करते थे उनके फैंस, काका की गाड़ी भी अगर निकलती थी तो उसके पीछे दौड़ पड़ते थे, उसकी मिट्टी उठाकर अपने माथे पे लगा लिया करते थे। तमाम सारी कहानियाँ आपको बताई होंगी, दोबारा उन चीज़ों को बताने का कोई फ़ायदा नहीं, सूरज को दिया दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। काका को याद करते रहेंगे और बीच बीच में उनके नगमे आपको सुनाते रहेंगे। अगला गाना आपको सुना रहे हैं अमित कुमार साहब और सपना मुखर्जी की आवाज़ में, कमाल का गाना, 80s के लोग थिरकने के लिए हो जाते हैं यार।
2: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits.
3: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ, मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: अमित कुमार साहब और सपना मुखर्जी जी की आवाज। त्रिदेव फिल्म का ये गाना सुन रहे थे, डीज की जान ये फिल्म। और छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद वर्थ होगा ये ब्रेक, क्योंकि गाना आपको सुनाएंगे बहुत ही प्यारा। सुनते रहिए गोल्डन राग वाली वीकेंड वाली ये पाठशाला।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: So whoever finds this letter, my car broke down. There is nothing nearby. And I've already eaten my meal deal sandwich. Please tell my wife that I love her and that she was right. This jacket isn't waterproof. Signed, Daniel S. Oh, actually, scrap that. Green flag's just arrived. Blimey, less than an hour.
3: Local rescue, nationwide. Nothing beats near. Green flag.
4: On average, we get to breakdowns in under an hour based on app and phone call outs combined. See greenflag.uk/data.
5: लाइका गोल्ड
6: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
7: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
8: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
9: विजिट ट्रेवल हब world.com।
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
12: High appreciation.
13: In Dubai.
14: Chawal ho best. Sab kare test. Disha rice ka hai zamana. Disha basmati rice.
15: Disha rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save, Kenton Road. Disha rice, come down and taste the difference.
16: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
17: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
16: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
17: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
16: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
17: Visit Kajal's Couture. .co.uk
18: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
19: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
20: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
19: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
20: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
19: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
20: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
21: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.

0: तो भाई अब आ गया है वक्त दिमाग में पहुंचने वाली सप्लाई का वोल्टेज चेक करने का, यानी कि दिमाग की बत्ती जलाने का, क्योंकि नेक्स्ट सॉन्ग के बाद हम आपको बताने वाले हैं, आप बताएं हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड। सुनते रहें और गाते गुनगुनाते भी रहें।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 129.89 पाकिस्तानी रुपीस, 373.87 श्रीलंकन रुपीस, 451.95 बांग्लादेशी टका, 165.8 अफगान अफगानी, 89 एंड 1 US डॉलर 1.34.
1: Like Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: तो जनाब इस वक्त सोने के भाव हैं 96 pounds and 7 pence per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Leica Gold, part of the largest Asian commercial radio network in the UK.

0: आशा दाई और किशोर दा की आवाज में सीता और गीता फिल्म का एक खूबसूरत सा गाना भी आप सुन रहे थे। कहा जाता है सीता जैसा चरित्र और गीता जैसा ज्ञान अगर किसी के पास हो तो फिर समझ लीजिए भगवान के पास पहुंचने की सीढ़ी एकदम क्लियर है। आप बताएं, और हम सुनाने वाली थीम के लिए दिमाग की बत्ती जलाने का आ गया है वक्त, और वो गोल्डन वर्ड है, कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल क्लियर रही, गोरा गोरी गोरे गोरिया, गोरा गोरी गोरे गोरिया, गोरे गोरे बांके छोरे। सुनते रहें और हम तक अपनी फरमाइश के पिटारे से गोरे गोरे गाने पहुंचाते रहें।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
3: 25? Seriously?
2: Sounds like Ojo time.
3: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
2: Sorry about the wait. How can I help?
3: You can help me celebrate. I won.
4: Feel the fun. Play Ojo.
5: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus. Gamble aware. T's and C's apply.
6: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara, performing live. Live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन। लंदन वालों ध्यान से सुन लो के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
8: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
9: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
8: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
9: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
8: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
10: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
11: साउथ हॉल ट्रेवल. Atoll protected.
12: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
13: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
12: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
14: Eviction? टेनेंट डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी का मसला, कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के लिए फास्ट एक्शन लेते हैं और रेसिडेंशियल और कमर्शियल कन्वेंसिंग प्लस कमर्शियल लीजेस हैंडल करते हैं। अभी कॉल करें 02089072444। दैट्स 02089072444।
15: Sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to 400 off. Call Sonatours on 0208 951 0111.
16: Carotino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Carotino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Carotino Better Ghee.
17: On Rug with Golden Rug.

0: जॉली मुखर्जी और लता जी की आवाज में आईना फिल्म का बड़ा ही प्यारा सा ये गीत गोरिया रे गोरिया रे। ये गाना हम तक पहुंचाया है अमित पटेल जी और हंसा जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खूबसूरत से गीत को हम तक पहुंचाने के लिए। और पहला गाना हमने गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा सुना दिया, और वो गाना हमने आपको गोल्डन राग की तरफ से सुनाया है। फरमाइशों का पिटारा खुल चुका है। बहुत प्यारे प्यारे गोरे गोरे गाने हम तक पहुंच चुके हैं, गोरे गोरी से गाने पहुंच चुके हैं। अगला गोरा सा गाना आ रहा है रफ़ी साहब और आशा दाई की आवाज़ में। फिल्म का नाम गेस कीजिए। बहुत सारे लोगों ने इस गाने को हम तक पहुँचाया। सुनते रहें वीकेंड वाली पाठशाला।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: India में पैसे भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: गोरी चलो ना हंस की चाल, बेटी बेटा फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना सुन रहे थे आप। और ये गाना हम तक पहुंचाया था संध्या भावसर जी, अमर जी और सालिम अख्तर जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। ये अगला गाना मोस्ट डिमांडिंग गाना है और ये गाना तो हमें आज बजाना भी चाहिए आप लोगों का, इस गाने का को हम तक पहुँचाने के लिए स्पेशल थैंक यू, क्योंकि ये गाना है हमारे काका का।
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Tasty Track of the Hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: किशोर दाव लता जी की आवाज में मुमताज और काका यानी कि राजेश खन्ना साहब के ऊपर फिल्माया गया ये गीत रोटी फिल्म का सुन रहे थे आप और ये गीत हम तक पहुंचाए हैं हसुमती जी, उल्ला जी, निर्मला जी, नरेंद्र पंचाल जी, सोमिला मुंगुर जी और हमारी साइलेंट लिसनर जया जी। अब तो आप साइलेंट लिसनर नहीं रही हैं, आपको सब लोग जान गए, लेकिन क्यों साइलेंट रहते हैं भाई? अगर हम आपको म्यूट गाने सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं, इसलिए आप परिवार का हिस्सा हैं। सब लोग दिल की बातें शेयर करना कतई मत भूला करिए। अगला गाना बड़ा ही प्यारा, मेरा बड़ा ही पसंदीदा ये गाना है। ऐसा नहीं कि मुझे पसंद है इसलिए मैं आपको सुनाता रहता हूँ, लेकिन ये कई और लोगों की भी पसंद है और आज तो गोरे गोरे गाने आ रहे हैं, सुनते रहें।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागस एंड डिटेल्स एट laikaradio.com।
3: On Rag with Golden Rag.

0: चली है चोरी।
1: लता जी किशोरदा की आवाज में दो चोर फिल्म का कमाल का ये गाना, और हम तक पहुंचाया था इस गाने को सपना जी एक्सप्रेस से उमेश जी और कैलाश जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा कैलाश जी ने, कमल जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही।
2: ये है लाइका गोल्ड।
3: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ऑल ट्रैवल।
1: साउथ ऑल ट्रैवल इज प्लीज्ड टू अनाउंस दैट FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call कीजिए साउथ ऑल ट्रैवल को, most competitive Dubai deals के लिए नंबर है 0208574 8410, at all protected.
3: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: Leica Gold.
3: Leica Extra Podcast Update.
1: Leica Extra Podcast का अपडेट आपके लिए, एपिसोड 25, Leica Presenters Take Over. Catch the epic conversation with Doni Brasco, Bali Brembert, Anika, Ruby Raza, Radio Wali and Anisa Nasir.
3: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट TravelHubWorld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: विजिट TravelHubWorld.com.
6: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
7: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
6: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
7: And you didn't pay those massive roaming charges?
6: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
8: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
9: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye jahan ghazals milti hai Bollywood se.
10: Shaam chalne lage.
9: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 p.m. Show starts 6 p.m. Tickets starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
11: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
12: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
11: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
12: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
11: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
12: Visit Kajal's Couture.
13: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
14: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
13: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
14: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
13: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
15: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444, दैट्स 0208-907-2444।
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड, और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
17: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लखाई रहे छे।
18: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जाई रहे छे आप पवित्र यात्रा पर।
17: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
18: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली अने जर्मनी साथे
17: दर्शन पण अने यूरोप पण।
18: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे।
17: कॉल 0208900-2323 द स्टार टूर्स।
18: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
0: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100 Atoll Protected.
19: भाइयो बहनों खुशखबरी 1905 से असली स्वाद बीकानेर वाला अब इल्फर्ड में इंडियास फेमस छोले भटूरे अब मैच मेड इन हेवन फैमिली को लाओ फ्लेवर्स ऑफ इंडिया का मजा लो मिले 513-519 ग्रैंड ब्रुक रोड गैंसू इल्फर्ड IG2-6HA बीकानेर वाला नाउ इन इल्फर्ड
3: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रागासन On this week's Leica Extra podcast, Leica Radio Network presenters get candid about films, lifestyle, and controversies.
20: You have to be really dedicated to be able to
21: become a
20: radio presenter. So you're giving sacrifices around you as well.
21: True.
20: Whether it's at home or whether it's family.
3: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
22: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.

0: लता जी और आमिर भाई कर्नाटकी जी की आवाज में समाधि फिल्म का एक खूबसूरत सा गाना, फिल्म का संगीत था सी रामचंद्र जी की तरफ से, और ये गाना हम तक पहुंचाया है संतोष जी, राजेश जी, रानी और पंकज जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का ही।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 129.86, पाकिस्तानी रुपीस 373.87, श्रीलंकन रुपीस 451.95, बांग्लादेशी टका 165.8, अफगान अफगानी 88.94 एंड 1 US dollar 1.34.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £96.07 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Feel good classics all day. This is Like a Gold.

0: किशोर दा और लता जी की आवाज में ये गुलिस्तां हमारा फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना भी आप सुन रहे हैं। एस डी बर्मन साहब ने इस फिल्म का संगीत दिया था। देव साहब और शर्मिला टैगोर जी इस फिल्म में नजर आए थे और ये गाना हम तक पहुंचाया है सुदेश टेकर जी और सरिता जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। और अगला गाना आ रहा है किसकी फरमाइश के पिटारे से निकलकर। फिल्म का नाम है अनीता मुकेश साहब की आवाज़ है कमाल का। ये भी गाना है और ये गाना हम तक पहुंचाया है हमारे बड़े ही प्यारे लिसनर किरण जी और अर्जन जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अगला घंटा याद रखें गोल्डन रॉक के तीन ऑप्शंस कर रहे हैं आपका इंतजार।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड।
2: चलो जाइए एक नवा सफर पर
3: सिरीन हॉलीडेज अपनी पूर्व अफ्रीकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नाइरोबी, मुंबासा, जांजिबार अनि दार एस सलाम साथे जिंजा अनि मचिसन फॉल्स।
4: बस पैक करो अनि रिलैक्स थई जाओ
3: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
4: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
3: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर।
5: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
6: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
5: high appreciation.
6: In Dubai.
7: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath. With over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu Ayurved that fits your life.
8: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस।
9: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड। अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
10: हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज एग्रीमेंट्स 30 pounds से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर, रग्स, बेड्स, सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं। विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।
11: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show Sare Gamapa is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
12: Reading, taiyar ho jaiye. Reading Mela aa raha hai Palmer Park mein. 1st aur 2nd August, dopahar 12 se sham 7 baje tak. Enjoy kijiye. Live performances by Harbhajan Talwar, Maz Bonafide, Manak E and Sona Valia. Plus live singing, dance, shopping, tasty food, fun fair, dhol or DJ. Entry bilkul free. More details ke liye call kare 07517-801-701. Reading Mela, Palmer Park, Wokingham Road, Reading, RG6 1LF. Exclusive radio partner, Leica Radio.
13: Southall travel, 7 days a week. Southall travel, 24
14: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
15: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
16: Southall Travel can take you there. Southall Travel. Atal protected.
17: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
18: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
17: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
19: राइस खरीदने का परफेक्ट टाइम आ गया है. बाय 20 kg टिल्डा बासमती राइस एंड गेट 1.5 kg गुलाब केनियन टी एब्सोल्युटली फ्री. मिक्स एंड मैच टिल्डा बासमती पैक्स टू मेक अप टू 20 kgs, यानी कि 4 टाइम्स 5 kg या 2 टाइम्स 10 kg या 1 टाइम्स 20 kg. दिस स्पेशल ऑफर इज अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स. हरी, ऑफर एंड्स व्हाइल स्टॉक्स लास्ट. क्वालिटी फूड्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों एक साथ.
20: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज. रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड. जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com.
21: On Rug with Golden Rug.

0: दिल लगी ने दी हवा, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। आशा दाई और किशोर दा की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत गाना दोस्ताना फिल्म का ये सुन रहे थे आप। और अब वक्त आ चुका है आपको आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस बताने का। एक बार फिर से तैयार हो जाइए अपने अपने दिमाग की बत्ती जलाने के लिए। कायदे प्लस कानून ये है कि हम आपको तीन गानों के ऑप्शंस बताएंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है, उसे वोट की तरह कास्ट करना है। जिस ऑप्शन को लेकर सबसे ज्यादा वोट हमें रिसीव होंगे वो गाना हमेशा की तरह आज का भी बनेगा गोल्डन राग। और आज हम स्पेशली तीन गाने ले रहे हैं काका यानी कि राजेश खन्ना साहब की फिल्म से जुड़े हुए, उनकी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर उनमें से एक ही आपको चुनने को मिलेगा, क्योंकि एक गाने को ही आप वोट देकर आज का विजयी गोल्डन राग बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए है, बड़ा ही प्यारा गाना काका के ऊपर फिल्म आ गया, बड़ा ही पॉपुलर गीत है ये। फिल्म का नाम है आपकी कसम, गाने के बोल है जिंदगी के सफ़र में। ऑप्शन बी है ओ मेरे दिल के चैन, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। ऑप्शन सी है मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, फिल्म का नाम है दाग। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑप्शन ए है जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, फिल्म का नाम है आपकी कसम। ऑप्शन बी है ओ मेरे दिल के चैन, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। एंड ऑप्शन सी है मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, फ्रॉम द फिल्म दाग। वोटिंग लाइन्स हो चुकी हैं ओपन, अपने अपने वोट कास्ट करना शुरू कर दें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले मिल रहे हैं आपको इंडियन करेंसी में 128 रुपीज़ 90 पैसे। याद रखिए आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Leica Radio. Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: 10 बजे फ्रांस और इंग्लैंड के बीच मुकाबला और संडे 19 जुलाई फाइनल मुकाबला स्पेन और अर्जेंटीना के दरमियान। और आप यह हमेशा याद रखें आपको 15 मिनट का फ्री लीगल एडवाइस भी मिल सकता है हमारे स्पॉन्सर रैकलॉ की तरफ से अगर आप मेंशन करते हैं लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
2: ये है लाइका गो।

0: Book now, visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, all protected.
3: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
4: Mum, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
5: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
4: So where do we find something like that now?
5: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our elders used it.
6: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
8: हिमालय कारपेट की धधकती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज एग्रीमेंट्स 30 pounds से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर, रग्स, बेड्स, सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं। विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल, अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।
9: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राजकचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है,
10: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्स्लो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में।
9: सच?
10: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
11: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड, IG2 6HA। कॉल करें 07555-506015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन Ilford.
12: Location, location, location.
13: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
13: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
13: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
13: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
12: high appreciation
13: in Dubai.
14: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
15: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
14: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
15: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
14: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
15: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 pounds से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
17: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
18: Like a Cool, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे.
19: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: मुलाकात बस इतनी नहीं है, अभी मुलाकात और भी जारी रहेगी और ये मुलाकातों का सिलसिला चलता रहेगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए आज के गोल्डन नाग के तीन ऑप्शंस, जो कि हैं काका की फिल्म यानी कि राजेश खन्ना साहब की फिल्म से जुड़े हुए। ऑप्शन ए है जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, फिल्म का नाम है आपकी कसम। ऑप्शन बी है ओ मेरे दिल के चैन, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। ऑप्शन सी है मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, फिल्म का नाम है दाग। अब आपको बताना है आपका फेवरेट ऑप्शन कौन सा है। वोटिंग लाइन्स ओपन है, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें।
1: ये है लाइका गोल्ड फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ravi sahab aur Lata ji ki awaaz mein Adalat film ka ek bada hi pyara sa gaana hai. Yaad rakhein, voting lines abhi tak open hai. Apne vote cast karte rahein. Isse pehle ki main aapko vintage gold wala ek pyara sa gaana sunaye, lekin usse pehle ek संस्कारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.
2: लाइका रेडियो नेटवर्क के साथ सेलिब्रेट कीजिए इस बार एनुअल रथ यात्रा इस संडे 19 जुलाई को, जो कि स्टार्ट होगी SKSST कैंटन हैरो टेंपल से और एंड होगा जिसका श्री स्वामी नारायण टेंपल स्टैनमोर में. डिवोटीज को चांस मिलेगा जगन्नाथ के इस रथ को खींचने का, पुल करने का, और साथ ही साथ हैरो एंड ब्रेंट में इस रथ यात्रा का आयोजन रहेगा. इस रोड में इस रथ यात्रा का आवागमन रहेगा और लाइव अपडेट देंगे हम, जहां पर हमारे लेजेंड रवि शर्मा जी, सरिता सबरवाल जी और अश्विनी वहां पर मौजूद रहेंगी. लाइका नेटवर्क, लाइका रेडियो, लाइका गोल्ड, आप भी वहां पर जाएं और इस संस्कारी इवेंट का हिस्सा बने.
0: On Rug with Golden Rug.

0: रोशनी 420 1958 में आया हुआ ये विंटेज फिल्म का विंटेज गाना। थोड़ी देर में ब्रेक के बाद मिलते हैं और एक प्यारा सा नगमा सुनाते हैं किशोर धवल लता जी की आवाज में। कहीं मत जाइए, वोटिंग लाइन ओपन है, अपने अपने वोट कास्ट करते रहे।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
5: Two businesses,
6: same town,
5: same service.
6: One appears on page one of Google,
5: the other doesn't.
6: Guess which one gets the customer?
5: The truth is brutal.
6: The first page of Google gets the business.
5: Everyone else gets what's left.
6: So here's the real question.
5: When your customers search for what you sell, do they find you?
6: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
5: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
7: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara, performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner Leica Radio Network.
8: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
9: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.

0: लेकिन आप लोग आ चुके हैं पास, क्योंकि चुना जा चुका है आज का गोल्डन राग। और क्या दिया है सरप्राइज आप लोगों ने एक दूसरे को, थोड़ी देर में अगला सॉन्ग आज का गोल्डन राग।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 129.86 पाकिस्तानी रुपीस, 373.87 श्रीलंकन रुपीस, 451.95 बांग्लादेशी टका, 165 अफगान अफगानी, 88.86 एंड 1 US डॉलर 1.34.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £96.07 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: ये है लाइका गोल्ड।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
4: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: भाई मेरे दिल में क्या है वो तो मैं बता दूं, आप लोग हैं कमाल के। बड़ा ही कमाल का गाना आप लोगों ने आज भारी मतों से विजयी बनाया है। दाग फिल्म का ये गीत सुन रहे हैं आप। फिल्म का संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने, लेकिन आज जिसे जिन लोगों ने इस ऑप्शन को चुना है उनको दिल से सलाम। रानी जी फ्रॉम स्लाव, सतविंदर जी, सोमिला मुंगुर जी, उल्लाह जी, नौशीन खान, प्रीति फ्रॉम बेल्जियम, अर्जन जी, अशोक बसीन, किरण फ्रॉम हैरो, अयूब चौहान जी, हंसा मिस्त्री, संतोष जी, सोहबत खान, कंचन, पंकज वर्मा, सुमित चौरसिया, सालिम अख्तर, प्रशांत और आरती जी, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इतना एंगेजमेंट बढ़ाए रखने के लिए, हमेशा हौसला अफजाई करने के लिए और लाइका नेटवर्क को इतना प्यार देने के लिए। अब होगी आपसे कल मुलाकात। सुबह संडे वाली महफिल तक का इंतजार करें, लेकिन नेक्स्ट आ रही हैं सरिता जी आपको प्यारे प्यारे गीत सुनाने के लिए। सुनते रहे गोल्डन रॉक।
1: लाइका गोल्ड। Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02023935757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: Dreaming of paradise?
4: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
3: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays. All at exclusive prices.
4: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
3: At all protected.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: गुड आफ्टरनून। बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और दोनों ही गीत बड़े ज़बरदस्त थे और दोनों ही गीतों में एक आवाज़ शामिल रही और वो आवाज़ थी सुखविंदर सिंह जी की। सुखविंदर सिंह जी एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं। एंड पहला गीत हमने सुना बीवी नंबर वन से और दूसरा गीत फिल्म अस्तित्व से था। और बता दूं कि इस फिल्म अस्तित्व का संगीत भी किसका था? सुखविंदर सिंह जी का। बहुत प्यारी फिल्म थी जिसमें तब्बू ने काम किया था एंड तब्बू के साथ थे सचिन खंडेडकर और उनके साथ मोहनीश बहल ने भी काम किया था और महेश मांजरेकर ने इस फिल्म को बनाया था। एंड पहला गीत बीवी नंबर वन, करिश्मा कपूर थी इस फिल्म में, सुष्मिता सेन थी, सलमान खान थे और उम्मीद करती हूँ दोनों के दोनों गीत आपने पसंद किए। राइट भी, अगर आज आप भी सुखविंदर सिंह के साथ अपना बर्थडे मना रहे हैं तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी सारी टीम की तरफ से। और उम्मीद करती हूँ जो भी कान इस वक्त इस तरफ हैं यानी कि लाइका रेडियो नेटवर्क के ज़रिए हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब का स्वागत, उन सब का खैर मकदम करती हूँ। जहाँ भी बैठे सुन रहे हैं उम्मीद करती हूँ कि आप खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय करें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन तो कम ऑन, चीयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय। जियो और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए। गाने तो चुन चुन कर लाते ये सरिता सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके कानों में रस खोलें, बस सरिता यही चाहती है। राइट, अब सुखविंदर सिंह जी को ज़रा बर्थडे की विशेष दे दें। हमारी ये मनोकामना है और हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि उनका जीवन सुरमय रहे इसी तरह से और हमेशा वो गाते रहें, गुनगुनाते रहें, हम सबका मन बहलाते रहें। सुखविंदर सिंह जी एक प्लेबैक सिंगर हैं, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। 18 जुलाई 1971 को अमृतसर पंजाब में इनका जन्म हुआ था। एंड सुखविंदर सिंह ना सिर्फ एक इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं, उन्होंने बहुत सी प्राइवेट गीत भी गाए हैं, गज़लें भी गाई हैं। और उनका प्राइवेट एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, छूले आ मुझे छूले। समहाउ अगर मुझे मिला तो मैं ये गाना आज के प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूँगी, पर अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रहा है अपने कंप्यूटर जी पर। तो इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं, लिरिसिस्ट हैं एंड म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं। अपनी पावरफुल और एनर्जेटिक आवाज़ के लिए ये जाने जाते हैं और इनकी आवाज़ में कोई भी गीत जब मैं प्ले करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ सुखविंदर सिंह जी की बुलंद आवाज़ में आप ये गाना सुन रहे थे। उन्होंने हिंदी के अलावा और भी कई दूसरी भाषाओं में गाने गाए हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, मराठी, उर्दू एंड बंगाली। और उनके बहुत से गाने फेमस हुए हैं, लेकिन हाउ कुड वी फॉरगेट छैया छैया, जय हो, स्लम डॉग मिलियनियर का गाना, रमता जोगी फ्रॉम ताल, बीड़ी जलाई ले ओमकारा का गाना, हौले हौले रब ने बना दी जोड़ी, एंड देन बिस्मिल हैदर का गाना, गल्ला गुड़ियाँ, दिल धड़कने दो। तो ये गाने मैं शामिल नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये लाइका गोल्ड है जहाँ पर पुराने पुराने गीत रेट्रो स्टेशन है और आप पुराने गीत इंजॉय करते हैं। जय हो के लिए उन्हें ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे वो और दो फिल्म फेयर अवार्ड उन्होंने जीते और नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द बेस्ट प्लेबैक सिंगर भी जीता हुआ है। उनकी आवाज़ की सबसे बड़ी खासियत तो उसकी ताकत, जुनून और वो बड़े इमोशनल होके गाते हैं, भावनात्मक अभिव्यक्ति के इंसान हैं और इसी वजह से सुखविंदर सिंह बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय सम्मानित सिंगर्स में से एक हैं। और भी बातें होंगी और कोशिश रहेगी कुछ पुराने गीत मैं ढूंढ पाऊँ, लेकिन 80s में बहुत कम उन्होंने गाया और जितने गीत गाए उनमें से अगर कुछ मुझे अच्छा लगा तो मैं ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगी। पर हमारी तरफ से शुभकामनाएं सुखविंदर जी को।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भैया SBI UK के जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आज आपको बहुत अच्छा रेट मिल रहा है. एक पाउंड के बदले ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले 128 rupees and 90 paisa आपको मिल सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन या SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors. Specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates and for other legal requirements.
0: भैया आज रात थर्ड प्लेस फाइनल होने वाला है फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में. रात को 10 बजे ये मैच शुरू होगा तो देखना मत भूलिएगा. और इसी के साथ रेकलॉ वालों की ऑफर का भी फ़ायदा उठाइए. उनका ये कहना है कि 15 मिनट की फ्री लीगल एडवाइस आपको मिल सकती है. ये रेकलॉ वाले हमारे स्पॉन्सर्स हैं और आपको सिर्फ मेंशन करना है लाइका.
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. This is Sarita Sabharwal on Leica Gold.
3: Leica Gold.
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's S-I-M-Z-Y.com. T's and C's apply.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: भी आप सोच रहे होंगे कि सुखविंदर सिंह के गीत सुना रहे थे तो पंकज जी की आवाज़ शामिल की, तो क्या आप जानते हैं कि ये वो गीत है जिसमें जो हाई नोट पर जो आलाप लेने थे वो सुखविंदर सिंह जी ने लिए थे। जी हाँ, हिज वॉइस वॉज नोटिस बाय द कंपोजर ड्यू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ड्यूरिंग हिज अर्ली ईयर्स एज ए सिंगर एंड सब्सिक्वेंटली वर्कड एज अ म्यूजिकल अरेंजर ऑन सेवरल ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट्स में काम किया था ड्यूरिंग द लेट 1980s एंड अर्ली 1990s। वन ऑफ हिज अर्लीस्ट रिकॉर्डेड वोकल कॉन्ट्रीब्यूशंस वॉज इन द सॉन्ग चिट्ठी आई है from the film Naam in 1986 which was performed by Pankaj Udas, aap sabne suna। तो इस गीत से फिर इनको भी पहचान मिली, किने सुखविंदर सिंह जी को। जिस गीत की मैं बात कर रही थी कि मुझे बहुत पसंद है, वो गीत मैं आप तक पहुंचा रही हूं इस उम्मीद पर कि आप ज़रूर इसे इंजॉय करेंगे।
3: ये है लाइका गोल्ड
0: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles।
2: आ छू ले मुझे, छू ले। दिस वॉज हिज प्राइवेट एल्बम कॉल्ड जश्न।

0: और इस गीत को लिखा भी था, कंपोज भी किया था और गाया भी था सुखविंदर सिंह जी ने. सुखविंदर सिंह इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे. हमारी तरफ से, सारी टीम की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई.
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स. मोर फ्लेवर्स, मोर कन्वीनियंस, मोर यम. ग्रैब योर कोको बोल टुडे.
0: भाई इसी के साथ सरिता आप सभी को याद दिलाने जा रही है लाइका रेडियो नेटवर्क की सेलिब्रेटिंग द एनुअल रथ यात्रा दिस संडे 19 जुलाई स्टार्टिंग फ्रॉम SKSST स्वामी नारायण मंदिर कैंटन हैरो टेंपल से शुरू हो गए एंड एंडिंग एट श्री स्वामी नारायण टेंपल इन स्टैनमो. डिवोटीज विल हैव द चांस ऑफ पुलिंग लॉर्ड जगन्नाथ जीज चैरियट थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ हैरो एंड ब्रेंट live on air updates भी होंगी. रवि शर्मा जी वहाँ होंगे, सरिता सबरवाल विल बी देयर एंड अश्विनी और शायद हो सकता है कुछ और प्रेजेंटर से भी आपकी मुलाकात हो. लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड दोनों जगह आप अपडेट्स सुन पाएंगे. टू फाइंड आउट मोर यू कैन विजिट SKSST.org.
1: Listen wherever you are by downloading the Laika Radio mobile app now. Sarita Sabharwal with your weekend classics. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ever get giddy renewing your car insurance? Fantasize about finance offers or paying your service bill? Probably not. After all, the best bit about driving a BMW is driving it. So leave the admin and skip to the best bit. Choose a new BMW 1 Series or 2 Series Grand Coupe by the 30th of September to enjoy a year's insurance, 3 years servicing, plus 2.9% APR representative. Search BMW, skip to the best bit. BMW UK Limited is a credit broker, not a lender. BMW Finance, T's and C's apply. Insurance age restrictions and exclusions apply. Whew, that's the admin over with.
3: Ye hai Laika Gold. 10:35 AM.
4: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
6: हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल. रूम साइज रेमिनेंट्स 30 pounds से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ. लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर, LVT फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर. रग्स, बेड्स, सोफास सब पर 50% ऑफ. कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं. विजिट HimalayaCarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल.
7: Kajal's Couture for every celebration, every moment, and every unforgettable entrance.
8: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
7: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewelry, accessories, and stylish outfits for men and women.
8: Plus, Laika listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
7: Kajal's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
8: Visit Kajal's Couture. .co.uk.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
10: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.

0: Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
0: in Dubai.
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
4: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
5: Southall Travel, Atoll Protected.
6: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
7: हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज लेमिनेट्स 30 pounds से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर, रग्स, बेड्स, सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं। विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।
8: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
9: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
8: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
9: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
8: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
10: Rice khareedne ka perfect time aa gaya hai. Buy 20 kg Tilda Basmati rice and get 1.5 kg Gulab Kenyan tea absolutely free. Mix and match Tilda Basmati packs to make up to 20 kgs. Yani ke 4 times 5 kg ya 2 times 10 kg ya 1 times 20 kg. This special offer is available at all quality food stores. Hurry, offer ends while stocks last. Quality foods, quality aur value, dono ek saath.
11: Divorce ya custody ka issue, ise akele face mat kare. Canton Solicitors London आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। आज ही एक्शन ले 0208-907-2444।
12: यार कई बार मुझे अपने गांव के छोले भटूरे याद आते हैं, वही स्वाद, वही खुशबू।
13: तो रुक क्यों रहा है, वही देश का असली स्वाद अब मिलता है हाउसलो के बीकानेर वाला में।
12: सच?
13: अरे बिल्कुल, छोले भटूरे, राज कचौड़ी और मिठाइयों का असली टेस्ट, जैसे माँ के हाथों का बना हो।
14: बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया, अब हाउसलो हाई स्ट्रीट में। आज ही विजिट करो
15: सरिता सबरवाल विद योर वीकेंड क्लासिक्स।

ये गीत मैंने लिया था फ्रॉम द फिल्म तीन देवियां। आई डोंट नो कि ये गाना उन पर कल्पना जी पर पिक्चराइज हुआ था या नहीं, लेकिन गाना बहुत खूबसूरत और मुझे उम्मीद है कि गीत को आपने पसंद भी किया। और प्रोग्राम का अगला गीत हमें पहुंचाने वाला है कहाँ, न्यूज़ तक। न्यूज़ के उस पार मैं सरिता आप ही के साथ हूँ। आज बहुत से बर्थडेज हैं, बर्थ एनिवर्सरीज हैं, बताऊँगी नेक्स्ट आवर में।

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और उम्मीद करती हूँ कि दोनों के दोनों गीत आपने पसंद किए। राजेश खन्ना सुपरस्टार रहे, जितना फेम उन्हें मिला, जितना प्यार उन्हें मिला शायद ही किसी और एक्टर को मिला होगा। उनकी सभी की सभी फिल्मों को, स्पेशली 60s, लेट 60s और 70s की फिल्मों को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। और यहाँ तक क्रेज़ थी गर्ल्स में कि उन्होंने अपने अपने टैटूज बनवाए हुए थे, या कहते हैं कि ब्लेड से या सुई से, या यू नो उसके राजेश खन्ना के नाम छिदवाए हुए थे, खुदवाए हुए थे। इतना प्यार करती थी गर्ल्स टू राजेश खन्ना। एंड राजेश खन्ना की सभी फिल्में उस वक्त बहुत पसंद की जाती थी। कितनी फिल्में आपने देखी अगर आप बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। राजेश खन्ना मेरे भी फेवरेट रहे हैं। एंड राजेश खन्ना, जिनका असली नाम जतिन खन्ना था, फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर राजेश खन्ना रख लिया था। और उन्हें उनके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे वो उनके पास नहीं रहते थे, बल्कि ही वॉज अडॉप्टेड बाय समिति। एंड राजेश खन्ना जी ने 1965 में फिल्म फेयर और यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के टैलेंट हंट कंपटीशन में हिस्सा लिया था, और इसे जीत के बाद उन्होंने फिल्मों में पहला कदम रखा था, उन्हें पहला मौका मिला था। उनकी डेब्यू फिल्म थी आखिरी खत, आप सभी अच्छी तरह से उनके बारे में जानते हैं, इन 1966। एंड इंडिया की तरफ से एकेडमी अवार्ड जो था, जैसे ऑस्कर अवार्ड होता है उसके बराबर के ये अवार्ड होता है, के लिए ऑफिशियल एंट्री बनी थी। एंड उन्हें बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार माना जाता है। उन्होंने लगातार 15 हिट फिल्मों का रिकॉर्ड बनाया जो आज भी बहुत ख़ास माना जाता है। राजेश खन्ना सिर्फ एक्टर ही नहीं थे बल्कि कुछ फिल्मों में उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग भी की है, और उन्होंने सफ़र, अमर प्रेम और सौतन जैसे प्रोजेक्ट्स में अपनी आवाज़ दी थी। फिल्म आनंद के लिए उन्होंने रेगुलर एक्टिंग फी नहीं ली थी, डू यू नो दिस, इसके बदले में उन्होंने फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स में हिस्सा मांगा था, जो एक अलग बिजनेस डिसीजन था। उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग इतनी ज़बरदस्त थी कि कई बार फैंस उनकी कार को लिपस्टिक्स लगा लगा के रंग देते थे, डिफरेंट कलर कर देते थे, इतना प्यार करते थे। आज भी राजेश खन्ना और उनकी एक्टिंग को याद रखा जाता है, और साथ साथ उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा था। तो और भी बातें ज़रूर मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी। गाने बता दूँ कि आप मेरे बहुत से साथी मुझे लिखकर भेज रहे हैं कि ये गाने शामिल कर दें, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी पसंद को भी पूरा कर पाऊँ, लेकिन मैं आपको भी चॉइस दे रही हूँ। ये दोनों गीत तो आपने सुन लिए, उसके बाद आराधना का मैंने चुना है एक गीत, और वही गीत मैं प्ले करने वाली हूँ, बताऊँगी नहीं कौन सा वाला। मेरे जीवन साथी का कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है, दीवाना लेकर आया है या फिर कितने सपने कितने अरमां? इन दोनों गीतों में से क्या आपकी पसंद है मुझे जल्दी से व्हाट्सएप करके बता दीजिएगा। दीवाना लेकर आया है कितने और कितने सपने कितने अरमां, ए और बी, जो गाना आपको ज्यादा पसंद है उसके बारे में जल्दी से लिख दीजिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Be one British sterling pound ke badle aaj aapko de rahe hain ye 128 rupees and 90 paisas. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like our gold.
3: Like a radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: और यही मैं ऐड कर दूं कि ये आपको 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस देंगे अगर आप लाइका का नाम मेंशन करेंगे। और अब बता दूं कि कौन सा मैच होने वाला है। आज 18 जुलाई सैटरडे रात 10 बजे होगा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में मैच, और कल फाइनल किसके बीच में, स्पेन एंड अर्जेंटीना में। किसे आप बैक करें, किसे सपोर्ट करें, बताना चाहते हैं ज़रूर बताइए।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ever get giddy renewing your car insurance? Fantasize about finance offers or paying your service bill? Probably not. After all, the best bit about driving a BMW is driving it. So leave the admin and skip to the best bit. Choose a new BMW 1 Series or 2 Series Grand Coupe by the 30th of September to enjoy a year's insurance, 3 years servicing, plus 2.9% APR representative. Search BMW, skip to the best bit. BMW UK Limited is a credit broker, not a lender. BMW Finance, T's and C's apply. Insurance age restrictions and exclusions apply. Whew, that's the admin over with.
1: This is Sarita Sabharwal on Leica Gold. Leica
4: Gold. If you're ready to grow your business, at Barclays, we say, let's go. From opening that second store to boosting your production, let's get growing. Whatever the goal for your business, with our £22 billion lending fund, we're ready to back UK businesses like yours. Search Barclays Business Banking. Barclays, backing your future. Subject to normal lending assessment, status and application. Terms and conditions apply.
5: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara, performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
5: Kajal's Couture, for every celebration, every moment and every unforgettable entrance.
8: Discover Kajal's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
5: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
8: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
5: Kajal's Couture, Southall, where every occasion finds its perfect style.
8: Visit kajalscouture.co.uk.
9: Himalaya Carpets ki dhadakti hui sale. Garmi se keemte pigalti hui sale. Room size remnants £30 se shuru. Tamam roll stock par mark prices par 20% off. Laminate flooring from £9 a square meter. LVT flooring from £12 a square meter. Rugs, beds, sofa. सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं। विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।
10: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
11: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
10: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
11: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
10: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
11: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
12: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath. Over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: फिल्म आराधना से चुना गया गीत शक्ति सावंत ने बनाई थी ये फिल्म और बहुत ही प्यारा सा संगीत है एसटी बर्मन साहब का और जोड़ी थी शर्मिला टैगोर एंड राजेश खन्ना की जो बहुत पसंद की गई और इन्होंने एक साथ बहुत सी फिल्मों में काम भी किया और उन्हीं की फिल्म सफ़र के भी दो गीत मैंने क्यों किए हैं लेकिन मैं नहीं डिसाइड कर पा रही हूँ कि कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद आएगा, जीवन से भरी तेरी आँखें या जिंदगी का सफ़र, कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है जल्दी से मुझे बता दीजिए। वेल, पहले गीत को जो मिले हैं वोट्स उसमें ज़्यादातर मेरे साथियों ने गाना पसंद किया है बी कितने सपने कितने अरमा वाला गीत एंड थैंक यू एवर सो मच आप सभी का कि बड़े प्यार से सुन रहे हैं। राजन सहगल जी, यू आर नॉट फीलिंग टू गुड, मैं आपके लिए प्रे करती हूँ कि जल्दी से ठीक हो जाएँ एंड कार्तिक बहुत सारा प्यार दीजिएगा राजन जी को एंड विजय गनोवा जी, यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, आपकी जिंदगी में ऐसे दिन बार बार आए हजार बार आए। हरीश रुड्डा जी, मोहम्मद अयूब चौहान साहब, निधिश आपने भी जो गीत सुनना चाहे वही प्रोग्राम में शामिल हो रहा है, रितेश आपकी पसंद दूसरी है, मानसी जी, इंतशाब, हरप्रीत, जगतार जी, परविंदर मठारू जी और भी बहुत सारे नाम हैं, हना जी, आप सभी ने ये गीत सुनना चाहे तो चलिए पहले गीत सुन लेते हैं या थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और मैं शेयर करना चाहूँगी। आप जानते हैं कि अ पोस्टेज स्टैम्प फीचरिंग राजेश खन्ना वॉज रिलीज बाय द इंडिया पोस्ट ऑन 3rd of May 2013 ऑन हिज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी। अ ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ राजेश खन्ना वॉज अनवेल्ड एट बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम एट बांद्रा बैंड स्टैंड मुंबई में एंड अ चौक जिसे कहते हैं चौक में बैठते हैं चौक एक चौक बनाया गया इन गिरगांव हैज़ बीन नेम्ड सुपरस्टार राजेश खन्ना चौक इन हिज मेमोरी इन 2014 एंड हिज बायोग्राफी राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार बाय यासिर उस्मान वॉज पब्लिश बाय पेंगुइन बुक्स एंड इन 2022 में हिज बायोग्राफी राजेश खन्ना द मोस्ट वर्सटाइल सुपरस्टार एक्टर ऑफ हिंदी सिनेमा बाय नारायणन सुब्रमण्यम वॉज रिलीज इन 2018। 1 किलोमीटर फिटनेस ट्रेल इन लाजपत नगर नेशनल पार्क वॉज नेम्ड आफ्टर राजेश खन्ना विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय हिज वाइफ डिम्पल कपाटिया। कितने अच्छे इंसान काम करते हैं तभी उन्हें दुनिया जाने के बाद भी इस तरह से याद रखती है।
0: सरिता सबरवाल, the biggest classics on Like a Gold.

0: Sarita Summerwall with your weekend classics.
1: और ज्यादा साथियों ने मेरे इस गीत को पसंद किया है. जी हाँ, जहाँ भी बैठे सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और जो बातें मैं बता रही हूँ वो भी आपको अच्छी लग रही है, जानकर अच्छा लगता है. राजेश खन्ना वन 7 ऑल इंडिया क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड्स, बेस्ट एक्टर अवार्ड्स, एंड इसके साथ साथ एंड रिसीव 10 नॉमिनेशंस. ही वन 4 बेस्ट एक्टर अवार्ड्स.

0: कल्याण जी आनंद जी का संगीत था और बहुत ही प्यारी बहुत खूबसूरत फिल्म थी, शर्मिला टैगोर थी एक बार फिर से इनकी हीरोइन। राइट भाई, लाइका प्रेजेंटर्स टेक ओवर। यस, दिस इज द टॉपिक दिस टाइम एंड इट्स एपिसोड 25। कैच दिस एपिक कन्वर्सेशन विद डॉनी ब्रास्को, बाली ब्रम्बट, एनिका रूबी एंड रेडियो वाली एंड अनीसा नासिर। और अगर आप देखना चाहते हैं इसे तो लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट इज अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजोन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Over here.
3: Picnic spots secured. Snacks required. Pop to Co-op. Get 3 for 2 on picky bits like irresistible paella arancini, pancetta croquettes or margarita

0: ट्रैवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
1: ट्रैवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट travelhubworld.com.
2: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राज कचौरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है,
3: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्स्लो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में.
2: सच?
3: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह.
4: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड, IG2 6HA. कॉल करें 07555-506-015. बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन इलफोर्ड.
5: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इलफोर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3444-24-hour line.
6: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस.
1: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस.
7: विल नहीं है ये रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन विल्स और प्रोबेट को फास्ट और आसान बनाते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444. अपनी फैमिली को सिक्योर करें. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन 0208-907-2444.
2: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસમાં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
8: બીએપીએસ મંદિરનું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
2: યુરોપના 3-9 દિવસના ટૂર્સ,
8: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
2: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
8: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
2: કોલ 0208900-2323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
8: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
9: એટ બ્રેસ્ટ કેન્સર નાઉ વી નો ચેકિંગ યોર બ્રેસ્ટ કેન ફીલ ડોન્ટિંગ, બટ ઇટ્સ એઝ સિમ્પલ એઝ TLC. ટચ, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
10: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at LeicaRadio.com and the Leica Radio mobile app. Leica Gold. The perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और ये है प्रोग्राम का लास्ट आवर. आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ इफ़ यू हैव जस्ट जॉइन मी. तो फर्स्ट टू आवर्स कहाँ थे आप, जल्दी से बता दीजिए मुझे कि आप मेरा साथ दे रहे हैं 4 बजे से या अभी अभी सुनना शुरू किया है. राइट, जो मेरे साथी मुझे बराबर मैसेज लिख के भेज रहे हैं उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और इसी तरह से अपने मैसेजेस भेजते रहिएगा. प्रोग्राम के इस आवर के पहले दो गाने एक ही डायरेक्टर की फिल्मों के थे, राजीव गुलशन राय. आप इनके नाम से अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे. बॉर्न ऑन 18 जुलाई 1955, ही इज़ एन इंडियन डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड फिल्म एडिटर एंड ही इज़ सन ऑफ प्रोड्यूसर गुलशन राय. आप सब जानते हैं उनके काम को भी. ही हैज़ डायरेक्टेड मैनी फिल्म्स अंडर हिज फादर्स प्रोडक्शन कंपनी एंड त्रिमूर्ति फिल्म्स, के बारे में कौन नहीं जानता है, इंक्लूडिंग ब्लॉकबस्टर्स लाइक त्रिदेव इन 89, विश्वात्मा इन 92, मोहरा इन 94 एंड गुप्त इन 1997. एंड ही वॉज मैरिड टू एक्ट्रेस सोनम फ्रॉम 1991 टिल 2016 एंड has a son with her as well. So, अब वो एक साथ नहीं है. राजीव राय started his career as an assistant for his father Gulshan Rai distribution and production, and he eventually made his debut as a director with the 1985 hit film युद्ध, जिसका गीत आपने अभी अभी सुना. दोस्तों, अब तुम सबको ये शाम मुबारक हो. तो सच में मैं अपने दिल से कहती हूँ कि आज आपको आज की शाम बहुत बहुत मुबारक हो. एंड उसके बाद उन्होंने विश्वात्मा त्रिदेव बनाई, जो कि सुपर डुपर हिट फिल्म थी. देन विश्वात्मा अनदर हिट फिल्म एंड मोहरा इन 1994, मोहरा के भी गाने बड़े ज़बरदस्त, एंड गुप्त इन 1997. और उनकी नोटेबल फिल्म्स, जो जितनी भी फिल्में ये मैंने नाम लिए हैं, मोस्टली फिल्मों में संगीत इधर विजू शाह का या कल्याण जी आनंद जी का रहा. उम्मीद करती दोनों गीत आपने पसंद किए और हम राजीव राय जी को बहुत बहुत बधाई देंगे उनके जन्मदिन पर.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भी आज आपका एक ब्रिटिश पाउंड आपको क्या दिला सकता है, 128 रुपीस एंड 90 पैसे. और आप ब्रांच में जाकर ऑनलाइन SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. TNC applies.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold.
3: Laika Gold.
1: Laika Radio. Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: भाई आज मैच है फ्रांस एंड इंग्लैंड के बीच और रात 10 बजे ये मैच होगा. और कल बड़ा बहुत बड़ा मैच, संडे 19 जुलाई फाइनल होने वाला है फाइनली, एंड स्पेन और अर्जेंटीना के बीच ये मैच होने वाला है. और बहुत से मेरे साथी अपनी अपनी चॉइस भी लिख कर भेज रहे हैं कि हम इस टीम को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. चलिए, थैंक यू सो मच. और आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं बताना चाहते तो जरूर बताइएगा. बट डोंट फॉरगेट, यू कैन गेट योर 15 मिनट्स फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका.
1: दिस अपडेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय रैक लॉ सॉलिसिटर्स. कॉल 0203 345 2000 और विजिट raklaw.co.uk. गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव.
4: With the MG Electric range, you get more tech at a smart cost. And that cost just got smarter with zero deposit and 0% APR across the electric range, excluding MGIM and Cyberster. Make the smart choice. Move to an electric MG. Book your test drive today at mg.co.uk. MG. Find your more. MG Motor UK are a credit broker, not a lender. PCP balloon payment required for ownership. Registered by September 30th. T's and C's at mg.co.uk.
1: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
3: Like a gold.
5: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
6: No worries. I'm having fun on Play Ojo.
7: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
5: Here's your decaf oat milk, extra but not piping hot.
6: Thanks. Playtime's over. Mmm, lovely.
8: Feel the fun. Play Ojo.
7: 18 plus gamble aware.
9: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद ले। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
10: एक नवा सफर पर
11: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नैरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दार एस सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स।
12: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ।
11: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
12: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
11: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर।
13: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
14: Relax, I've booked the Uber already.
13: How? My roaming isn't even working yet.
14: I switched to Simzy before we left London.
13: Simzy? Since when are you the tech expert?
14: Since I decided I want a stress-free holiday.
15: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
16: T's and C's apply.
17: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
18: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
19: She can't hear you, but danger always hears her coming.
20: Sab dar bhag jaye.
19: Huma Qureshi stars in the explosive action thriller Baby Do Die Do with Sikandar Khair, Chunky Pandey and Seema Pava. Baby Do Die Do in cinemas now. Follow Bhudev Entertainment on Instagram for more information.
21: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
22: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.

0: What a beautiful song from the film ये रास्ते हैं प्यार के 1963 में आई थी ये फिल्म और रवि जी का था संगीत जो है इस हफ्ते के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक एंड इस फिल्म में काम किया था सुनील दत्त थे लीला नाडियो थी एंड अशोक कुमार एंड फिल्म का संगीत रवि जी का बहुत खूबसूरत गीत लिखे राजेंद्र किशन जी ने इस फिल्म में और भी दूसरे गाने थे तुम जिस पे नज़र डालो वो भी गाना बहुत खूबसूरत है ये रास्ते हैं प्यार के द टाइटल ट्रैक इज आज में आज ये मेरी ज़िंदगी वो वाला गीत भी बहुत खूबसूरत है। चलिए मुझे उम्मीद है कि मेरी पसंद आपकी पसंद बन पाए। वैसे आपके मैसेजेस इस बात की गवाह देते हैं कि आपको हर एक गीत मेरा चुना हुआ पसंद आता है। हरप्रीत वैंकूवर में सुन रही हैं, सोनी रावल जी, वत्सला जी, भारती डी जी, विमल रायन जी, निर्मल एंड किरित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अर्जुन जी, मानसी जी, दिव्या फ्रॉम हैरो, हरीश रूडा जी, शेखर जी एंड जगतार जी इन वैंकूवर एंड परविंदर मठारू, ललित पटेल, रितेश जी, संतोष जी, उल्लास फ्रॉम टोरंटो, हंसा वोरा, हना, निधिश, इंतशा, महेंद्र बरजारिया जी इन साउथ हैरो, मोहम्मद अयूब चौहान एंड विजय गनोवा जी आज बर्थडे मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे। एंड भाई जिस जिनके नाम रह गए हैं आई एम सो सॉरी, बहुत लंबी लिस्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जो गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ वो उस गीत में आवाज़ है मेहदी हसन साहब की। आज ही के दिन उनके जन्म हुआ था इन 1927, तो आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर वैसे तो उनके बहुत से गीत, बहुत सी गज़लें मुझे बहुत पसंद है, लेकिन दिस वन आई रियली चेरिश बिकॉज क्यों बताऊंगी पहले सुन लीजिएगा।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Bhi aap soche honge ki Sarita ne kyun kaha ki iske saath meri yaadein judi hain. Yes, Mehdi Hasan saab ek private mehfil thi hamari aur us mehfil mein unhone ye geet meri request par gaya tha aur unhone Shabana Azmi bhi thi wahan par, wo dekhne lagi कि क्या सरिता कौन है, सरिता की पसंद क्यों शामिल हो रही है. सो मुझे इसलिए ये गीत, गजल कह लें, खतील शफाई साहब का लिखा कलाम बहुत पसंद है.
3: दिस सुपरहिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस. टेक योर टेस्ट बड्स टू द

0: मेहदी हसन साहब की आवाज़ हमेशा अमर रहेगी, इनके गाए हुए गीत हमेशा हम गुनगुनाते रहेंगे, चाहे वो गीत हो या गज़ल हो। और ये एक एक्स्ट्रा मैंने गीत चुना आप सबके लिए और उम्मीद करती हूँ आपने इसे पसंद भी किया।
1: ये है लाइका गोल्ड।
0: और अब अपने सभी सुनने वालों को मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप इस सितंबर एक अनफॉरगेटेबल फैमिली एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं तो सुन लीजिए ध्यान से कि लाइका रेडियो नेटवर्क इज प्राउड टू बी द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर फॉर दिवाली स्टोरी द स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल दैट सोल्ड आउट द आइकॉनिक रॉयल एल्बर्ट हॉल एंड इज नाउ कमिंग टू ओवो वेम्बली अरीना ऑन संडे 27th ऑफ सेप्टेम्बर। क्रिएटेड बाय नितिन पालन MBE, फाउंडर ऑफ सनातन इवेंट्स एंड फीचरिंग स्टनिंग कोरियोग्राफी बाय द बॉलीवुड डांस स्कूल टीम। दिस इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रोडक्शन है वो रामायण की टाइमलेस स्टोरी को फोर पावरफुल चैप्टर्स एंड स्पेशली कंपोज्ड 7 सॉन्ग साउंड ट्रैक के साथ आप पेश की जाएगी एंड इज अ ट्रूली इंटरनेशनल कास्ट के साथ स्टेज पर लेकर आए हैं। एंड स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल प्री शो शाम 5 बजे से लेकर 5:45 तक चलेगा और उसके बाद मेन परफॉर्मेंस शाम को 6:15 पर शुरू होगी, 9:30 तक चलेगी। तो देर किस बात की है, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस मैजिकल सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। बुक योर टिकट्स नाउ टुडे विद www.diwalistory.com। और साउथ ओल ट्रेवल्स वाले भी आपको सफ़र करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि दुबई की बहुत सी ऑफर्स हैं। कॉल साउथ ओल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पेटिटिव दुबई डील्स ऑन 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
1: ये है
3: लाइका गोल्ड। ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 02087828833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
0: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: विजिट ट्रेवल हब world.com।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
7: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara, performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Lyca Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Lyca Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Lyca Radio Network.
8: Eviction? टेनेंट डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी का मसला। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के लिए फास्ट एक्शन लेते हैं और रेजिडेंशियल और कमर्शियल कन्वेंसिंग प्लस कमर्शियल लीजेस हैंडल करते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444, दैट्स 0208-907-2444।
9: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
10: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
9: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
11: Minar Jewelers, Wandsworth's Business Award winners. Best Customer Service 2026. Come and find out why. Beautiful diamond engagement rings starting from £500. Phone 0208-767-7547. Sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to £400 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
12: Tasty track of the hour brought to you by Cook.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: £1 के बदले आज आपको मिलेंगे 129 रुपीस एंड 69 पैसे पाकिस्तानी रुपीस 373.66 श्रीलंकन रुपीस 452.4 बांग्लादेशी टका 165.75 अफगान अफगानी 88.77 एंड US डॉलर्स 1.34.
0: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Gold. LIKA Gold. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: It's £96.07 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games and a bit of Ye Ya Wo. Only Leica Gold.
3: Ye hai Leica Gold. 10:35 AM.
1: और ये है सरिता सबरवाल जो कहने जा रही है अब मेरे जाने का वक्त है. बहुत कुछ बताना था राजेश खन्ना जी के बारे में लेकिन नहीं बता पाई हूँ. कोई बात नहीं, उनके गीत मैंने आपको उनकी फिल्मों के गीत सुनाए और उम्मीद करती हूँ कि ये सारे के सारे गीत आपने पसंद किए. मुझे अब माइक्रोफोन के इस तरफ से इजाज़त दीजिएगा. अगली मुलाकात कल होगी. कल इंतज़ार होगा मुझे भी आपसे मिलने का और आपको भी ज़रूर रहेगा, ऐसी मैं आशा रखती हूँ. और मेरे बाद सैंडी शाह आ रही है विंटेज गोल्ड लेकर और दूसरी तरफ आ रही है सोनिया. एंड मैनचेस्टर रेडियो पर आप सुन पाएंगे अंकुर को. अपना और अपनों का ख्याल रखिए. मुझे इजाज़त, बाय फॉर नाउ.

0: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Kenton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
1: रेडिंग तैयार हो जाइए. रेडिंग मेला आ रहा है पामर पार्क में 1st और 2nd अगस्त दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक. एंजॉय कीजिए लाइव परफॉर्मेंसेस बाय हरभजन तलवार, मैस बोनाफाइड, मानक ई एंड सोना वालिया, प्लस लाइव सिंगिंग, डांस, शॉपिंग, टेस्टी फूड, फन फेयर, ढोल और डीजे. एंट्री बिल्कुल फ्री. मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 07517801701. रेडिंग मेला पामर पार्क, वोकिंगहम रोड, रेडिंग, RG6 1LF. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Laika Radio.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
3: यू नो दैट क्लीन फ्रेश फीलिंग After brushing, Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.

0: Just now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
2: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive Radio

0: मुकेश की आवाज बहुत ही दर्द भरा गीत था, फिल्म का नाम लेक 1949। कमिंग अप नेक्स्ट नौशाद का संगीत होगा, अनदर दर्द भरा गीत, इट्स दुखी कपल ऑफ सॉन्ग्स, आई एम नॉट गोना अपोलोजाइज फॉर इट, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। शमशाद बेगम सदाबहार, फिल्म का नाम मेला, नौशाद का संगीत 1948। फिर उसके बाद तलत महमूद की आवाज और फिल्म का नाम है चोर बाजार फ्रॉम 1954, एंड द म्यूजिक इज बाय अनु मलिक, डैड सरदार मलिक, एंड द फिल्म स्टार्ड शमी कपूर बिलीव इट और नॉट एंड सुमित्रा देवी। एंजॉय द सॉन्ग।
1: विंटेज गोल्ड ऑन लाइक अ गोल्ड, विंटेज गोल्ड एवरी वीकेंड विद सैंडी शाह। This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Vintage Gold with Sandy Shah on Leica Gold, Greater London.

0: moment and every unforgettable entrance.
1: Discover Gardner's Couture Southall, the grand new destination for elegance at 159 The Broadway Southall, UB1 1LR.
0: Explore exquisite bridal wear, glamorous party wear, beautiful jewellery, accessories and stylish outfits for men and women.
1: Plus, Leica listeners get 10% off on bridal wear and party wear. Open 7 days a week.
0: Gardner's Couture Southall, where every occasion finds its perfect style.
1: Visit gardnerscouture.co.uk.
2: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: भाइयों बहनों, खुशखबरी, 1905 से असली स्वाद बीकानेर वाला अब इल्फर्ड में। इंडिया फेमस छोले भटूरे, अ मैच मेड इन हेवन। फैमिली को लाओ, फ्लेवर्स ऑफ इंडिया का मजा लो। मिले 513-519 ग्रैंड ब्रुक रोड, गैंडसू, इल्फर्ड, IG2-6HA, बीकानेर वाला, नाउ इन इल्फर्ड।
4: विंटेज गोल्ड ऑन लाइका गोल्ड। Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
5: Forgotten memories refreshed. Leica Gold.

मुंह से मत लगा चीज है बुरी, देख बच जरा चीज है बुरी, छोड़ दे ये मैं कशी मेरे हम नशीं, मेरे हम नशीं। अरे बात मत

0: ये है लाइका गोल्ड। वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन
1: एक्सपीरियंस एन अनफॉरगेटेबल evening of timeless ghazals. The prince of ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara, performing live in London on Thursday 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
5: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
4: डेजर्ट सफारी,
5: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
4: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
5: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
6: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
7: She can't hear you, but danger always hears her coming.
8: Sab dar bhag jaye.
7: Huma Qureshi stars in the explosive action thriller Baby Do Die Do with Sikandar Khair, Chunky Pandey and Seema Pava. Baby Do Die Do in cinemas now. Follow Bhudev Entertainment on Instagram for more information.
9: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
10: Four beers, please, garçon!
9: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
11: Like a gold par har raat ki yahi reet. Purane magar sada bahar geet.

0: Location, location, location.
1: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
0: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
1: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
0: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
1: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
0: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
1: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
0: High appreciation.
1: In Dubai.
2: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 hour line.
3: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
4: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
5: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
7: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। दैट्स 0208-907-2444।
8: Packed for the trip? Gifts? Passport?
9: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
8: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
9: Simzy?
8: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
10: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
11: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: The biggest classics throughout the night, non-stop on Gold Nights. Like a Gold on 10:35 AM.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साफो ट्रेवल Auto protected.
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
4: At Breast Cancer Now, we know checking your breasts can feel daunting. But it's as simple as TLC. Touch, look, check. Touch your breasts, look for any changes, check anything unusual with your GP. Anyone can get breast cancer, so it's important to check yourself regularly. Learn the signs and symptoms of breast cancer at breastcancernow.org/TLC.
5: You know how fans shout at football matches?
6: Oh, wake up!
5: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
7: Classic Nagme, aapke apne Leica Gold par.

0: Bringing to you the best classics all night. Like a Gold on 10:35 AM.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410।
0: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 02071321458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
5: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदा बहार गीत।
6: न झटका ज़ुल्फ़ से